वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का अपना रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन गुरुवार, जुलाई माह की 23 तारीख 2026 ईस्वी, तदनुसार शक संबत 1948 की श्रावण माह की पहली तारीख। फिल वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर है। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई।

0: खिलाड़ियों ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, हमारे किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है पोली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन। वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
2: किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती के बारे में। सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें तो इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। पॉली हाउस में आमतौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, पर सब्जियों का चयन पौधों की ऊंचाई, मौसम, सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत और बाजार भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके लिए ज्यादातर उन सब्जियों को चुनें जो कम जगह घेरती हो और उनका बाजार भाव ज्यादा मिलता हो। पॉली हाउस में उगाने के लिए बहुत सी सब्जियां उपयुक्त रहती हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, खरबूजा, लौकी, गोभी, बैंगन, फ्रेंच बीन, करेला, तरबूज वगैरह। पॉली हाउस तकनीक के उपयोग हम आपको बता दें, विपरीत मौसम यानी बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं और कम समय में नर्सरी तैयार होती है। ये संरचनाएं सब्जियों को ठंड, पाला, गर्मी और हवा से बचाती है। सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने में सहायक है, जिससे अगेती फसल लेकर ज्यादा भाव में बाजार में बेचा जा सकता है। अधिक मूल्य वाली सब्जियों का उत्पादन करना पॉली हाउस तकनीक से संभव हो पाया है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर का वर्ष भर उत्पादन किया जा सकता है। सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी भी संभव है। सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है। कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। सब्जियों की मोनोक्रॉपिंग को बढ़ाना यानी साल में कई बार फसल उगा सकते हैं, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी का विकास तेजी से होता है। इसमें सब्जियों की विपरीत मौसम में नर्सरी तैयार करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। इससे कम लागत वाले पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, करेला, तुरई, कद्दू और ककड़ी वगैरह की बेमौसमी अर्थात सर्दी में नर्सरी पौध तैयार करके 1-2 महीने अगेती फसल ली जा सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इसके लिए बांस की खपच्ची, पॉलिथीन शीट, सुतली से एक झोपड़ी नुमा ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सब्जियों की पौध दिसंबर से जनवरी में तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में अगेती नर्सरी यानी पौध से कई फायदे हैं, जैसे अधिक पैदावार, बेमौसमी उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, कम पानी की आवश्यकता, कम खरपतवार और आसान नियंत्रण, स्वस्थ व समय पर पौधे उत्पादन, विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीट और रोग नियंत्रण आसान। किसान भाइयों, पॉली हाउस में आप जब भी खेती करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। केवल उन्नत और संकर किस्में ही उगाएं।

0: सही सब्जी की फसल और सही किस्म का चयन करें। सब्जी की बिजाई से पहले पॉलीहाउस से गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें और जमीन को 5% फॉर्मेलिन से उपचारित करें। शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि ज्यादा लाभदायक फसलें होती हैं। पॉलीहाउस में पौधों को प्रोपेगेशन ट्रे में तैयार करें। सब्जियों की पौध के लिए प्रोपेगेशन ट्रे, जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, का इस्तेमाल करें, जो आमतौर पर 98 छिद्रों वाली होती है। इसमें कोकोपीट, परलेट और वर्मिकुलेट का 4:1:1 के अनुपात में मिश्रण लेकर ट्रे तैयार कर लें और बीज की बिजाई कर दें। पॉलीहाउस में खेती के अनेक फायदे हैं किसान बंधु, जैसे प्रत्येक बीज का बिना क्षति के अनुकरण, जड़ों का पूरा विकास और निकालने एवं रोपाई में सुविधाजनक, पौधों का विकास एक समान और स्वस्थ पौधों का तैयार होना, कम समय में पौध का तैयार होना, पौध की बीमारियां कम होती हैं, कीट नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है, रोपाई उपरांत कम मृत्यु दर और पौधों का विकास जल्दी होना। पॉलीहाउस को बागवानी के व्यवसायीकरण ने किसानों की एक खास जरूरत बना दिया है, जिसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। परंपरागत कृषि विधियों की अपेक्षा पॉलीहाउस में सब्जियों को उगाने से खुले वातावरण की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक पैदावार ली जा सकती है। वर्ष भर सब्जी उत्पादन करना साथ ही उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और उत्पादकता से भी काफी बढ़ोतरी प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार पॉलीहाउस में बेमौसमी सब्जियां उत्पादन कर हम बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं रामचरित मानस गान की 216वीं कड़ी।
2: एपिसोड 216, 216।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं चिंतन से और साथी अनुपमा तिवारी से सुनते हैं सत्संगति का प्रभाव।
1: सत्संगति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। शठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइए धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता

0: आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन स्वर रेडियो साथी अनुपमा तिवारी का था। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना से। आराधना के आज के हमारे कलाकार हैं अनुराधा पोड़वाल।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज के आराधना के हमारे कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से और सुनते हैं भेंटवार्ता रीढ़ की हड्डी की बीमारी और सावधानियां। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर राजचंद्र झा, जबकि उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, आजकल की वर्तमान जीवन शैली की यदि हम बात करें तो रीढ़ की बीमारी से बहुत सारे लोग आजकल ग्रसित हो जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को प्रभावित करती है, और क्या क्या सावधानियां अपने हम जीवन में बरतें, और खान पान का हम किस प्रकार ख्याल रखें कि एक संतुलित जीवन हम व्यतीत कर पाएं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियाँ हम तक नहीं पहुँचे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है रीढ़ के हड्डियों से संबंधित बीमारियों में?
2: शरीर के किसी भी अंग की हम बात करें तो आमतौर पे चार कारण गिनवाए जाते हैं बीमारियों के होने के पीछे। एक जन्मजात, जैसे रीढ़ की हड्डियां हैं, किसी बच्चा पैदा होता है उसकी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, या एक से ज़्यादा हड्डी एक से एक साथ मिल जाए तो उसकी हाइट लंबाई कम होती है। दूसरा, संक्रमण बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया से जीवाणु से हो सकते हैं, कीटाणु से हो सकते हैं। तीसरा, ट्यूमर, जो साधारण ट्यूमर जो जानलेवा नहीं होता है, बेनाइन, या जिसे हम कैंसर कहते हैं।

0: चौथा कारण होता है चोट लगना। तो रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों को भी हम इन्हीं चार भागों में बांट के देखते हैं। जन्मजात बीमारियों का मैंने कहा, उसका हमारे पास अभी कोई ऐसा साधन नहीं है खान पान में या दवाइयों के माध्यम से कि उसको हम रोक सकें। दुर्घटना, अपनी तरफ से सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं होंगी तो उसका इलाज होगा। संक्रमण से बचा जा सकता है, और जो आज की जीवन शैली का आपने जिक्र किया जिसकी वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, तो उसमें खान पान और जीवन शैली में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी। आजकल के हमारे युवा साथी लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं, और काम करने के सिलसिले में बहुत सारी बीमारियां उन तक पहुंचती है। उन्हें कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है, और कभी कभी पैर के पीछे भी उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, किस तरह की हम सावधानियां रखें कि बीमारी नहीं हो?
0: समय और युग का अपना धर्म होता है। लैपटॉप पर काम करना है तो करना है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में जो है कि आप इससे कैसे बचें, तो इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं कि एक तो आप एक ही स्थिति में, एक ही पोस्चर में शरीर को ना रखें। बीच में एक आध मिनट के लिए आप उठ के दो चार कदम टहल सकते हैं। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो गर्दन से लेकर कमर तक सहारा दे। सीधा होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए, सीधी और कड़ी कुर्सी का उपयोग करें। और अगर संभव हो तो लैपटॉप को टेबल पर थोड़ा ऊंचा कोई सपोर्ट देके रखें, ताकि लैपटॉप का स्क्रीन आपके नज़रों के सामने पैरेलल हो, कि आपको झुक के ना काम करना पड़े। तो अगर ये छोटी छोटी सावधानियों से आप रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं।
1: जिसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने दिनचर्या में हम सुधार ला लें?
0: प्रारंभिक लक्षण ज़्यादातर मामले में ये होता है कि काम करते समय दर्द का एहसास होना या थकावट का, कड़ापन गर्दन के पीछे, कमर के पीछे कड़ापन का होना भी शुरुआती लक्षण है। इस स्थिति में अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि काम की अधिकता से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली सावधानी की जरूरत इसी समय है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके बैठने के तरीके, आपके काम करने के तरीके के बारे में सुझाव देंगे, आपको खान पान के विषय में बताएंगे, आपको कुछ व्यायाम की सलाह देंगे, और अगर आवश्यक होगा तो दवाइयां देंगे। इन चारों के संयोग से ही इन बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका समाधान भी निकल सकता है। खान पान में सबसे आवश्यक ये है कि एक चीज़ हम लोग याद रखें कि अपने रसोई घर में उन चीज़ों का ज़्यादा समावेश करें जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, दादा, नाना, नानी, दादी। ये फास्ट फूड ने बहुत नुकसान किया है। इस वर्ष पूरी दुनिया में, विशेषकर भारतवर्ष में, मोटे अनाजों पर काफ़ी चर्चा हो रही है, और फिर से एक बार उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो मोटे अनाज, अब अगर भात ही है, चावल खाना है, तो मोटा उसना चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप मिलेट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें मड़ुआ है, कोदो है, बाजरा है, जो इन सब का भी प्रयोग शुरू करें। एक दौर आया कि हम लोग मैदा की तरफ भागते गए, महीन और चिकना दिखने वाले चावल की ओर गए, इससे नुकसान। और जो आपके और हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध सब्जियां हैं, साग हैं, झारखंड इस मामले में बहुत धनी है, तरह तरह के साग यहाँ सालों भर उपलब्ध रहते हैं, और सभी साग शरीर के लिए, खास करके हड्डियों के लिए भी, जैसे पालक है, बहुत लाभदायक है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फास्ट फूड, चाउमीन जैसे पदार्थों से बचें।
1: एक्सरसाइज की हम बात करें, क्योंकि हम आजकल घरों के अंदर सिमट के रह जाते हैं, घूमना फिरना हमारा बहुत कम हो गया है, तो व्यायाम हम कितने

0: ना करें और कितना हम सुबह की सैर करें।
1: आमतौर पे इस बारे में सलाह आज के दिन जो दी जा रही है कि कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन, अगर संभव हो तो 7ों दिन करें, लेकिन नहीं संभव हो तो सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन सैर करें और तेजी से करें, ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो बाहर नहीं निकल पाते हैं या मजबूरी है महानगरियों में कि ओपन स्पेस, खुली जगह नहीं है जहाँ जाके आप व्यायाम कर सकते हैं, तो घर में कुछ प्राणायाम और कुछ आसन हैं जो कोई भी गृहस्थ हो वो कर सकता है। और जो ऑफिस में अगर आपके जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो आजकल सलाह ये दी जा रही है कि आधे घंटे बैठने के बाद अगर आप 1 मिनट भी चहलकदमी कर लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, पैर, घुटना, कूल्हा, नीचे कमर, पीठ और गर्दन का दर्द कम होगा।
0: और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं?
1: रीढ़ की हड्डी में एक तो है कि इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम लोगों के देश में बहुतायत में पाया जाता है, वो है रीढ़ की हड्डी का टीबी, यक्ष्मा रोग, उसको भी प्रभावित करता है। उसमें घाव हो जाता है और अगर सड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक रह गई तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मुख्य नस होता है उस पर दबाव पड़ने से लकवा भी हो सकता है। टीबी ना हो तो बैक्टीरिया, साधारण कीटाणुओं से होता है, उसमें पस जैसे कि फोड़ा जैसा रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। और जो आज के जीव समय की महामारी के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, वो है रीढ़ की हड्डियों की कमजोरी, ओस्टियोपोरोसिस। उसमें बैठे बैठे फ्रैक्चर, आपकी हड्डी बिना किसी चोट के भी टूट जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाता है, उस तरह का हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, तो रीढ़ की हड्डी के भी ट्यूमर होते हैं। उसमें एक मैंने कहा कि जो जानलेवा ना हो, बेनाइन, और एक जो गंभीर घातक हो सकता है, मैलिग्नेंट अर्थात कैंसर, वो रीढ़ की हड्डियों का भी होता।
0: अंत में क्या कहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खुश रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
1: सक्रिय रहें, भोजन मोटा रूखा ज्यादा करें, भोजन में सामग्रियों का प्रवेश करें, और शरीर के अंगों को एक स्थिति में लगातार रखने की बजाय उसका थोड़ा बहुत संचालन होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजचंद्र झा।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 MHz पर। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: संस्कृत में समाचार, उसके बाद होंगे हिंदी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्ध क्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन् उपवेशने मन्त्रिमण्डल सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा, राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देश मनीला नगरे आयोजित क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-अधिक-19-शततमे वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-अधिक-19-शततमे वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे, शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना।
2: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमेरिका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, अभी कुछ देर पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे समाचार। आपने सुना संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जान लेते हैं प्रातकालीन सभा में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दोस्तों बस अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 से आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। आज हम परवीन सुल्ताना से सुनेंगे राग अहीर भैरव पर आधारित गायन। इसके बाद कुछ ही देर बाद 7:45 पर हम सुनेंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार होंगे हरिहरण। इसके बाद दोस्तों सुबह 8 हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले मॉर्निंग न्यूज, और उसके बाद रांची केंद्र से जुड़कर 8:30 से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। दोस्तों सुबह 8:45 पर फिर से हम जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 MHz पर और सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसके बाद दोस्तों सुबह 9 का समय निर्धारित है जोहार पलामू कार्यक्रम के लिए। आज हम सुनेंगे 23 जुलाई को जन्मे स्वतंत्रता संग्रामी बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आज़ाद पर विशेष कार्यक्रम। साथ ही हम सुनेंगे महान अभिनेता हास्य कलाकार महमूद के प्रयाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, आज हम सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष चर्चा। दोस्तों सुबह 9:30 पे हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का भाग 1334। इसके बाद दोस्तों हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से और सुबह 10 सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 10:05 में हिंदी समाचार सुनने के बाद 10:10 पे जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से और विविध भारती का प्रसारण सुनेंगे आज के मेहमान। दोस्तों इसके बाद विविध भारती से जुड़ाव हमारा लगातार जारी रहेगा और 11 सुनेंगे रंग तरंग और 12 यादों की महफिल। इसके बाद दोस्तों लगातार हम शाम 5:30 तक बारी बारी से जुड़ेंगे दिल्ली रांची व मुंबई केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार अंग्रेजी समाचार प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रम गीतमाला। सदाबहार नगमे, सखी सहेली, हल्लो फरमाइश और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। इसके बाद दोस्तों 5:30 पर हम सुनेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग के तहत हम आज सुनेंगे परवीन सुल्ताना के गायन। हम सुनेंगे राग अहीर भैरव।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंग। आपने सुना परवीन सुल्ताना की आवाज में अहीर भैरव और भैरव पर आधारित शास्त्रीय गायन। आइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के बाद हम लोग जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार हैं हरिहरण।

हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के स्वर सरिता के हमारे कलाकार हैं हरिहरण।

तुम्हारे नाम से बावस्ता जब से नाम हुआ, हमारा जिक्र भी महफिल में सुबह शाम हुआ। आइए दोस्तों, स्वर सरिता के तहत फिर से एक बार सुनते हैं।

हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर सरिता, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज स्वर सरिता के हमारे कलाकार हैं हरिहरण।

कब तक यूं ही रुलाएगी तन्हाइयां हमें, न मिलेगी क्या कभी तेरी परछाइयां हमें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के इस आखिरी पादान पे आइए फिर से हम एक बार सुनते हैं हरिहरन की आवाज में यह खूबसूरत सा गजल।

यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार थे हरिहरण। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
6: डीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा सेज गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस नीट पेपर लीक इश्यू इन पार्लियामेंट एंड फॉर्मुलेट इफेक्टिव पॉलिसी टू इंश्योर परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू। India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Center approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government, but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
5: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, what are the factors which are leading to paper leak, who are the people involved and how the central government has responded. जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है तो हमने किस तरीके से इसको address किया है.
8: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that government is aiming to bring at least 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. We have a report.
10: In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Centre is developing a 220 megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55 megawatt reactor and a high-temperature gas-cooled reactor designed to produce hydrogen. Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047, as announced in the Nuclear Energy Mission. The minister stated that as per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 gigawatts is expected to reach about 22 gigawatts by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
8: The centre has approved 2 electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. We have details from our correspondent.
11: The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav in a written reply in the Lok Sabha yesterday. The government said India's electronic manufacturing sector has witnessed significant growth over the past decade, supported by reforms such as protection-linked incentive schemes, liberalized FDI norms, tax reforms and labor reforms. Electronics production has increased from nearly 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to around 13.1 lakh crore rupees in 2025-26, while exports have risen from about 38,000 crore rupees to 4.24 lakh crore rupees during the same period. Mobile phone production has also grown more than 30-fold to 6.27 lakh crore rupees, with exports touching 2.59 lakh crore rupees. India now manufactures nearly 99.2% of the mobile phones sold domestically, and the sector provides employment to nearly 25 lakh people, according to industry estimates. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicăsăr Dan, Interim Prime Minister Ele Bolvian, President of the Senate Mircea Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romanian-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the president's visit.
12: Lake Ohrid is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
8: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanovska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Devkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
8: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
13: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress, but also radio's enduring power to inform, educate, entertain, and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
8: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leader slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
14: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding caps set to ease, airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill, India side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
8: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में
16: जन जन तक पहुंचे पैगाम डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान
17: यदि किसी को तेज बुखार सिर दर्द आंखों के पिछले हिस्से में दर्द नाक बहना उल्टी होना भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें मच्छरों से बचें घर के आसपास सफाई रखें पानी की टंकी गमले कूलर इत्यादि को साफ रखें हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं
18: तो सुन लो भाई सुन लो बहना डेंगू से तुम बच के रहना
17: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
19: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। 9 आगामी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक में हुए शामिल। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए 6 महीने में खाली होंगे गांव। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान में झारखंड पूरे देश में अव्वल। 46,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण कर बनाया रिकॉर्ड। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूरे

0: राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान, आज रांची और धनबाद सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें डुरंट कप को लेकर भारी उत्साह, पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेपीएससी के अधिकारी श्वेता गुप्ता सहित 5 को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में जेपीएससी के अधिकारी श्वेता गुप्ता और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कर्मी शामिल हैं। सीआईडी इस मामले में संभावित परीक्षा अनियमितताओं की विस्तृत जांच कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा पर मचे विवाद के बीच मुख्य परीक्षा सहित अपनी 9 आगामी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। 2 जुलाई को जारी पीटी परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ सार्वजनिक न करने और ओएमआर शीट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद छात्र संगठनों ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में घोटालों से भी बड़ा जांच घोटाला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। श्री दास का आरोप है कि बड़ी कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ इस्तीफे दिलाकर प्रभावशाली लोगों और नौकरशाहों को बचाया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के लिए 6 महीने में गांवों का विस्थापन पूरा किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई टाइगर फाउंडेशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र ने पीटीआर में बाहर से 2 बाघिन और 1 बाघ लाने की मंजूरी दे दी है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि बैठक में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, इको टूरिज्म तथा क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।
1: इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के आय व्यय के लेखों के आने वाले वित्तीय वर्ष में कार्य योजनाओं वर्तमान चीजों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से कोर सेक्टर के 2 कामों के लिए, एक वाटरशेड और दूसरा ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए बजट के एलोकेशन बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई और लाइवलीहुड के इश्यूज जो है उसको भी फोकस करने पर विचार हुआ।
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभियान में झारखंड देश में पहले स्थान पर रहा। राज्य ने 46,000 से अधिक महिलाओं का रिकॉर्ड पंजीकरण किया है। सरायकेला खरसांवा जिले राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी।
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 15 जून से 15 जुलाई के बीच में नए एनरोलमेंट का एक टारगेट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा अभियान के तहत, जिसमें हमारे जिले को 1202 का टारगेट दिया गया था। इसके विरुद्ध हमारे जिले ने 2065 लोगों का एनरोलमेंट किया है, जो कि 171% है। झारखंड राज्य पूरे देश में मातृत्व योजना में सबसे अव्वल रहा है और जिसमें सरायकेला खरसांवा जिला एनरोलमेंट के मामले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पुरस्कार विजेता फिल्मकारों से मुलाकात कर राज्य को बड़ा फिल्म हब बनाने का भरोसा दिया। मंत्रालय में हुई भेंट में बीजू टोप्पो और निरंजन कुजूर सहित कई फिल्मकार शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना करते हुए फिल्म निर्माण, शूटिंग और तकनीकी प्रशिक्षण में हर संभव सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कल धनबाद का दौरा कर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य रूप से फुस बंगला तेजाब कांड, गुरु नानक कॉलेज, खालसा स्कूल, जिम्स अस्पताल में मरीज की मौत तथा शिक्षक नियुक्ति व पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई।
3: कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए। और वो खालसा स्कूल में भी टीचर्स की नियुक्ति के संबंध में था, उसमें भी डीओ और डीएससी को मैंने कहा है कि इसमें जाएं और उसकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें, पूरा करा के उस पर जो है जो भी कमियां हैं, जो भी टीचरों की कमी है उसको पूर्ण कराने।
0: जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने

0: और एक खोखा बरामद किया है। ये सभी आरोपी हत्या की योजना बना रहे थे।
1: अलग अलग जगह से कुछ लोगों की डायरेक्ट, कुछ लोगों की स्वीकारोक्ति पर उनकी निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई और बहुत सारी चीजों की बरामदगी हुई। इसमें सबसे पहला नाम एक तड़ीपार अपराधी और ट्रक पेडलर मोहम्मद खुर्शीद, इसके साथ 5 अन्य लोग भी पकड़े गए। की गई पूछताछ के क्रम में इनके पास से भी बरामद हुई एक एक्स्ट्रा मैगजीन और एक जिंदा गोली। ये हमें खरकई रेलवे पुल से प्राप्त हुई, जो की पहला हमारा स्पॉट था। फिर दूसरी बरामदगी एक लोहे की देशी पिस्टल और 2 जिंदा गोली, ये हमें शिवघाट से प्राप्त।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो की अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 23 जुलाई 1927 को ही भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जो बाद में 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा और फिर अखिल भारतीय रेडियो बना। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया, जो अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरी सार्थकता से साकार कर रहा है। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी। विशेष रूप से आज राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और गुमला सहित 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। रांची स्थित मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से शुरू हो रहे 135वें डुरंड कप के ग्रुप सी के मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह है। दर्शकों की सुविधा के लिए 22 जुलाई से निशुल्क प्रवेश पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए और अब केवल 7,803 प्रवेश पत्र शेष बचे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में सीआईडी द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी और प्रस्तावित सभी परीक्षाओं के रद्द होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी बीएसओ गुड्डा से गिरफ्तार, 25 से होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित 9 परीक्षाएं स्थगित। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सिक्किम में खूंटी के श्रमिक समेत राज्य के 3 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, डीएसपीएमयू के शिक्षक और कर्मी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 आगामी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक समीक्षा बैठक में हुए शामिल, पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए 6 महीने में खाली होंगे काम। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान में झारखंड पूरे देश में अव्वल, 46,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण कर बनाया रिकॉर्ड। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय, मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूरे राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान, आज रांची और धनबाद सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें डुरंड कप को लेकर भारी उत्साह, पहले ही दिन रिकॉर्ड 12,256 प्रवेश पत्र बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

दोस्तों, अभी आप हमारे दिल्ली और रांची केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे समाचार। आपने सुना समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़ और प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 8:45 हो चुके हैं और आइए अब हम सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल, सेंटर फॉर WTO स्टडीज, IIFT। This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Jurisprudence की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी jurisprudence हो, whether environmental or otherwise, the starting point is always the constitution. तो constitution किस subject के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, and then we see, we look at the laws which are created as a result of the powers given by the constitution. But एक peculiar बात है Indian constitution की, कि इसमें बहुत एक school of thought है जिनका मानना है कि environmental constitution environmentally blind tha in the very beginning when in 1950s it was adopted, because the term environment, environmental protection, ecological conservation, ye sare terms nahi the usme. But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean ki koi intent nahi tha constitution ka environment ko protect karne ka. Later on we'll see kaise article 21 jo ki hamesha se constitution ka part raha hai usko hi use karke हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज़ करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं. और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मैंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ़ यू लुक एट द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मैंशनड होता है. इफ़ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मैंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विच इज़ मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें कवर होती हैं. बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. स्पेसिफिकली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA नोटिफिकेशन जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights or fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme Supreme Court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था विच इज़ नाउ DNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज़ देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ NGT ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज़ और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंड रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज़ आर्टिकल 19 एंड वन इज़ आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने

0: अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देयर वर फ्यू केसेस, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, होलसम एनवायरनमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. तो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम सी मेहता. ही वॉज अ बिग टाइम एनवायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी एनवायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरीज से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरीज से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज़ पोल्यूटिंग द गंगा रिवर. इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज. सो दिस नाउ राइट हैज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टी एन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम Department of Justice। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं जोहार पलामू कार्यक्रम से। जोहार पलामू कार्यक्रम का प्रस्तुति स्वर है मेरा यानी कि आप सभी का रेडियो दोस्त, आज के कार्यक्रम के होस्ट सैका चटर्जी का और संयोजन है प्रशांत गौरव का।
3: जोहार पलामू।

0: आइए दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम जोहार पलामू। सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों कि आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई सन 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक अपने पिता के मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए, लेकिन तब भी बिना किसी व्यवधान के उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु

तू के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। फिर उन्होंने 1876 ईस्वी में बीए ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की और 1889 ईस्वी में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई करते समय ही उन्होंने आगरकर से दोस्ती कर ली, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारी कि वे देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं, और अंत में उन्होंने संकल्प लिया कि कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। दोस्तों, इसी संकल्प के साथ उन्होंने कई कॉलेज की स्थापना की, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और इसी तरह कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया और समाज सेवा में लगे रहे। लेकिन दोस्तों, इन सब से अलग श्री बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए जाना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा दे दी और मांडले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति भगवद गीता रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवद गीता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इससे मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे के साथ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 ईस्वी में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके एवं पाकिस्तान के भावी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक सन 1918 में इंग्लैंड गए। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन की राजनीति में लेबर पार्टी एक उदीयमान शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसके नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध कायम किए। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई। सन 1947 ईस्वी में लेबर सरकार ने ही भारत की स्वतंत्रता को मंजूरी दी। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इस बात से वो बराबर इनकार करते रहे कि उन्होंने हिंसा के प्रयोग के लिए लोगों को उकसाया। तिलक सन 1895 ईस्वी में शिवाजी स्मरणोत्सव आंदोलन के साथ जुड़ गए। दोस्तों, 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति की जनक की उपाधि दी थी। आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जोहार पलामू कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट सैकर चैटर्जी। दोस्तों, जानकारियों के इस सफर के बाद चलिए अब मुड़ते हैं मनोरंजन की रंगीन दुनिया की तरफ। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज हमारे सिनेमा जगत के किंग ऑफ कॉमेडी महमूद साहब का दिन है। महमूद साहब एक निर्माता और अभिनेता के रूप में हिंदी सिनेमा को कई नायाब फिल्में दी है और उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत फिल्म थी 1971 में आई फिल्म लाखों में एक। तो देर किस बात की, आइए

आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम में अब फिर बात करते हैं कुछ जानकारियों की। दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले तत्कालीन अलीराजपुर रियासत के भावड़ा गांव में हुआ था। उनके जन्म स्थान भावड़ा को अब आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके माता का नाम जागरानी देवी और पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के दौरान जब मैजिस्ट्रेट ने उनसे नाम, पिता का नाम और पता पूछा था, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया था। तब से ही उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। आइए दोस्तों, अब डालते हैं एक नजर चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी पर। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे चंद्रशेखर आजाद। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनके विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सांडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखे हुए थे, लेकिन आज़ाद सबके आंखों में धूल झोंकते रहे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आज़ाद की मुखबरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा भी। दोस्तों, 1919 में हुए अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया।

तो वो आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। दोस्तों, आइए सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद की कुछ कहानियों को। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। दोस्तों, एक गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया और अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद अपने वसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरा गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत को कसकर चांटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पंपलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुड़ा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं, बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ के नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन को उनके दल को जड़ से उखाड़ने में तुल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं में शामिल पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्रनाथ लाहिरी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका कर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल प्राय निष्क्रिय हो रहा था। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश यह योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों की फांसी तथा 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इसी नई पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एकमत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगा और वो फैसला है जीत या मौत। दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी संदार्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सांडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग कर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सांडर्स के अंगरक्षक चन्नन सिंह ने दोनों का पीछा किया, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बंदूक से उसे भी गोली मारकर समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर पर्चे चिपका दिए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों ने इस कदम को सराहा। दोस्तों, HSRA द्वारा किए गए संडार्स बद और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया था। अन्य सजायाप्त अभियुक्तों में

सिर्फ तीन ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने की काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से तीनों को फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी वहां सीआईडी का एसएसपी नॉट बावर जीप से आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और चंद्रशेखर आजाद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। पुलिस ने बिना किसी को इसके सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भर कर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद की बलिदान की खबर जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद की बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं और अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू के साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चूमकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने सपूत को अंतिम विदाई देने उमर पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस का बलिदान के बाद उनकी राख के लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। दोस्तों, आजाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और ये सच है कि उन्हें कोई पकड़ न सका। वो आजाद पंछी खुद को गोली मारकर आजाद हो गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत हमारा कार्यक्रम जोहार पलामू। आज है 23 जुलाई और आज ही के दिन दो महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। आपने सुना इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों पर हमारी विशेष प्रस्तुति। आज के दिन हम दोनों विभूतियों को आकाशवाणी के डाल्टनगंज परिवार की ओर से, अपने तमाम श्रोताओं की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं। अभी आप सुन रहे थे जानकारी की बातें। आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में और जारी रखेंगे अपना ये खूबसूरत सा सफर। और आपको बताते चले दोस्तों, आज है 23 जुलाई और आज हास्य अभिनेता, सदाबहार अभिनेता, कॉमेडी किंग महमूद साहब का मृत्यु दिवस है। आज के ही दिन उनका निधन हो गया था। तो आइए दोस्तों, याद करते हैं महमूद को। आज हम याद कर रहे हैं उस सदाबहार अभिनेता को भी। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1968 में जिसका नाम था काजल। इस फिल्म में महमूद साहब की भी एक जबरदस्त अभिनय का कमाल दिखा था। उन पर फिल्माए गए इस काजल फिल्म से गीत को हम सुनेंगे, जिसे आवाज दिया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी, जबकि संगीत दिया है रवि।

दोस्तों आज एक और खास दिन है, आज है 23 जुलाई और भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण को 99 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इस दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 की दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना शुरू किया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो AIR ने जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। यह शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। भाषाओं की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। आकाशवाणी के देश भर में 413 स्टेशन हैं और इसकी पहुंच देश के 99.19% हिस्से में है। आकाशवाणी का 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण होता है। आइए दोस्तों अब सुनते हैं उस गीत को जिसके बिना महमूद साहब की फिल्मी सफर पूरा ही नहीं हो सकता। 1968 में आई थी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पड़ोसन। आइए सुनते हैं मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज में उस अमर गीत को जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण और संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए दोस्तों आप जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गाँव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
3: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
3: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
3: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
3: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नव वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल

0: के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है?
1: बिमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800-4405-59 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
5: पकड़ लेंगे।
6: और ये पकड़ लिया।
2: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
5: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
5: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
7: जी महाराज, जी महाराज।
5: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
8: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के 2 किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
5: कहो तुम्हारा प्रसंग क्या है?
9: महाराज ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
10: जी महाराज।
9: हमारा विवाह

0: तुमने लगाया है?
1: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
0: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
1: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
0: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
2: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
3: महाराज की जय! महाराज की जय!
4: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
5: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। हम स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
4: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
6: आज मैं राजा बनूंगी।
7: आज मैं राजा बनूंगा।
8: आज तो मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
0: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
6: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
10: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
6: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
10: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
6: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
10: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
10: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
4: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
1: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
13: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
4: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
14: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
13: चोरी?
4: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
13: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।

0: दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
1: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने चौथे दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
0: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ?
1: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
0: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
0: ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया।
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
7: अरे मशकू भाई,
8: जी जनाब,
7: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
8: लीजिए जनाब।
7: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
8: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
7: रखो रखो।
8: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
7: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो।
8: शुक्रिया
7: शुक्रिया।
6: ये अमृत वाला आ
9: गया। ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच

0: रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
1: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
2: मशकूब भाई।
3: जी जनाब।
2: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
3: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है। अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
2: लाओ। बस बस।
3: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
2: सही कहा मशकूक भाई।
3: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
2: अभी तक तो कुछ नहीं।
3: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
2: अरे नहीं नहीं
3: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।
2: भाई
3: जी
2: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
3: क्या बात करते हैं,
2: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
3: इसमें नेकी की क्या बात है?
2: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: ये तो मेरा फर्ज था।
2: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
3: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
2: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
3: अच्छा,
2: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
3: ये तो बड़ा नेक काम है।
2: अब ये लीजिए।
3: ये किताब, ये किताब किस लिए?
2: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
3: अच्छा,
2: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
3: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
2: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
3: तौबा तौबा तौबा,
2: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
3: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब,
6: लाजवाब इंसान है वो।
5: क्या बात करते हो,
6: क्या बहुत अच्छे इंसान।
0: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
1: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
0: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
1: पैसा लाए हो?
7: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: मुंह है खाली, आप चले आते हो।
7: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
7: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
7: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
7: मर जाएगा ये।
8: उठाओ,
7: मर जाएगा हकीम साहब।
8: चलो निकलो बाहर।
0: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब।
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? या खुदा माफी, माफी रहमत। अमर तो आ गया, क्या खूब रंग चमक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
1: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
3: या खुदा माफ।
1: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस

0: वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार
3: दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं बारी बारी से दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्रों से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार

0: सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। यह घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री एलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोनास योनोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi today reiterated that nothing is more important than the welfare and youth and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. He added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern, not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. Mr. Nadda said, Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, what are the factors which are leading to paper leak, who are the people involved and how the central government has responded. जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है तो हमने किस तरीके से इसको address किया है।
1: Delhi Metro Rail Corporation DMRC has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Mark, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Mark, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy Dr. Jitendra Singh has said that government is aiming to bring 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Center sector is developing a 220 megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55 megawatt reactor and a high temperature gas cooled reactor designed to produce hydrogen. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During a visit, President Murmu will meet Romanian President Nicușor Dan, Interim Prime Minister Ili Bolojan, President of the Senate Mircea Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romania-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia. A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protest today with full strength to ensure the implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. India won 61 medals at the last Commonwealth Games in 2022. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. And that is the end of this news bulletin.
3: बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
4: बिल्कुल गोविंद आप बताइए।
5: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आंख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
4: बिल्कुल
5: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना।
4: हाँ
5: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं
4: उनको। क्या बात। अच्छा मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
3: जिन

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूं कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर

0: रोने वाले गाने होंगे। तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: मतलब
1: है,
0: 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए। तो लोगों को
1: वाह,
0: ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी
1: हाँ ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर गाइए।
0: हैं। चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना, वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है। अच्छा, लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली, मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना, सफर फिल्म से। और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने।
0: वाह वाह,
1: फिल्म कभी कभी का।
0: हाँ,

0: अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर में सबसे ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहां रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है,
1: ये की देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ,
0: है ना, तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा मोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता, और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके। 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ, और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का
2: जिक्र? खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की भी गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना?
1: हो

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं आगे, सोच ही रहा था।
1: सोच सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ
1: गजलों का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: एग्जैक्टली तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है, दिल से धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, पर आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना आज।
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले पे छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को, पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते थे तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है। तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए
0: जी
1: मैंने कहा कि

0: ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा
1: है। और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी।

0: वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है, मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूलन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: अच्छा, इतने सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
2: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल में स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन यस हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ करें, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल,
2: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा बिगर देखना पड़ा।
1: गोविंद आप बताइए।
0: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं। और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, साउंड हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए, तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
2: जी।
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
2: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
2: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में, जब छोटा था, गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी बारीकी से,
2: इतनी बारीकी से जो सुनना
1: जी
2: ये,
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
2: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग, जहां आप नोट्स आपको करते हैं, वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
0: हाँ,
1: वो गाना सुनते हैं हमसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया हाँ। तो मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ म्यूजिक लगाया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है वो जो थीम है वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: अभी अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उससे इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती होगी तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती
1: है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था बस।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
0: वो तो हार्मोनियम
1: लेके, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई की पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है, इसे रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभा मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभा मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, एक विशेष सूचना, जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए शोभा गोटू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गोटू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गोटू ने ही। एक पारंपरिक

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए रूना लैला की आवाज में बज़्मे लैला एल्बम का ये कलाम। प्रवीण शाकिर ने लिखा इसे, निसार बज़्मी ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।
1: रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: गीता दत्त को सुनिए फिल्म सुजाता में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कैफी आजमी की गीत रचना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियमाधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in the NEET paper leaks. Mr. Modi also asserted that protecting students' future remains the top priority of the government. In a social media post, Prime Minister Modi said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. PM Modi's statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. Mr. Modi said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. The Prime Minister added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, urged the opposition to cooperate for the smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition.
3: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
2: Despite the appeal by Mr. Rijiju, the opposition members continued with sloganeering and trooped into the well. As the pandemonium continued, presiding officer Dilip Saikia adjourned the house till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of paper leak and students' protest. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the Rajya Sabha assembled again at 12 noon after the first adjournment, leader of the opposition Mallikarjun Kharge again raised the issue of NEET paper leak and students' protests. Union Minister and leader of the House Jagat Prakash Nadda criticized the opposition, terming its conduct highly irresponsible. However, the opposition continued with their protest and sloganeering. Amid the din, the chairman adjourned the House till 2 p.m. NDA and opposition MPs today held a protest at Makar Dwar inside Parliament premises. NDA MPs emphasized a discussion on the NEET paper leak issue in the House, while opposition MPs demanded the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. BJP President and Rajya Sabha MP Nitin Nabin said the NDA government is fully prepared to discuss the future of students and youth at every level. Speaking to reporters, Mr. Nabin said that leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and the entire opposition are shying away from the discussion in the House.
4: Our government is fully prepared to hold discussions at every level for the future of students and young people. However, Rahul Gandhi, the Congress party and the entire opposition are shying away from the discussion. They view young people merely as stepping stones for their politics, whereas the NDA government and Prime Minister Narendra Modi is to remain fully committed to build a bright future for the country's youth.
2: Delhi police has debunked reports circulating on social media claiming the death of a female during the protest at Jantar Mantar in New Delhi. In a social media post, the police clarified that the information is false and misleading. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting in Manila in the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific. And with that, we end this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, पेपर लीक में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए देश में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। सिक्किम टनल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में बीसीसीएल के कोल नीर प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला एएमई और एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर। और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेगी। आज दिए इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के नामची में तीस्ता जल विद्युत परियोजना सुरंग हादसे में झारखंड के श्रमिकों के प्रभावित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ट्विटर पर साझा किए गए संदेश में मुख्यमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग से प्रभावित झारखंडी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार सिक्किम प्रशासन के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में बीसीसीएल के कोल नीर प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत खदानों से निकलने वाले पानी को शुद्ध कर स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बीसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन मुरली कृष्ण रमैया ने बताया कि इस पहल से कोयलांचल क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे हजारों परिवारों को स्वच्छ पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
7: पर्यावरण के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो ये 2 करोड़ प्लस में एक हम प्लांट्स लेकर के आए हैं। ये 24 KLD का प्लांट है। कोई भी आदमी अपने 20 KLD का आकर के हर करके यहाँ फैसिलिटी भी रहेगा नियर बाई विलेजर्स के लिए और नियर बाई हमारे पब्लिसर्स के लिए।
6: रांची में पूर्वी भारत का पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस कोर्स नवंबर में राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होगा। पीपीपी मॉडल के तहत धनबाद के फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में संचालित होने वाले इस 3 वर्षीय एएमई कोर्स की फीस 6 लाख रुपए है। एयर होस्टेस के 2 कोर्स होंगे जिसमें ग्रूमिंग और स्विमिंग ट्रेनिंग भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुरुआत से पूर्व देवघर नगर निगम सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अलर्ट मोड में है। अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार के अनुसार 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले के लिए मंदिर परिसर, शिवगंगा और प्रमुख मार्गों पर व्यापक सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और गंदगी को देखते हुए नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं।
8: परिसर की जहाँ तक बात है उस पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सिद्धगंगा में विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। जितने भी इंक्रोचमेंट इसको चाहे वो नाला पे हो, शौचालय पे हो, चाहे सरकारी संपत्ति पे, सारे अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है और सफाई व्यवस्था की चाक चौबंद कर दी गई है। वो पूरे सिद्धगंगा में एक नेट का भी मार्किंग कर दिया गया ताकि जो खतरे के निशान से वो श्रद्धालु न जाए।
6: टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल नया सैटेलाइट स्टेशन विकसित करेगा। रेलवे इंजीनियरों की टीम ने गोविंदपुर, मकदमपुर और हाता क्षेत्र का सर्वे किया जिसमें गोविंदपुर मकदमपुर क्षेत्र को सबसे उपयुक्त पाया गया है। रोजाना 52 जोड़ी ट्रेनों और 60,000 यात्रियों को संभालने वाले

0: टाटानगर स्टेशन को इस नए स्टेशन से आउटर पर ट्रेनें रुकने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज देवघर और दुमका जिले के दौरे पर जा रही हैं। वह दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सल गतिविधियों और लंबित मामलों की समीक्षा करेंगी। डीजीपी के इस अहम दौरे को लेकर देवघर और दुमका पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोलकाता के 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के डॉक्टर बीरेंद्र कुमार और विपिन चाते को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री को ज्योरी मेंशन और तुमसे प्यार हो गया को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्योरी अवार्ड मिला। यह फिल्में सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित है। पुरस्कार मिलने पर डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मिल रहे सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
1: हम लोग उस म्यूजिक वीडियो के द्वारा संदेश दिए हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कोई फन नहीं है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इंड तक निभाना है। दूसरा है लूटन सिंह। वो लूटन सिंह एक 15 साल पुराना विधायक है। जब इलेक्शन होता है तब लूटन सिंह का दर्शन होता है, तरह तरह के सवाल आते हैं और नेता लोगों का जो चरित्र है उस हिसाब से लूटन सिंह अपना तरीके से आपको जवाब दे के निकल जाते हैं।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो की अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका का रेखांकित करता है। 23 जुलाई 1927 को ही भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जो बाद में 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा और फिर अखिल भारतीय रेडियो बना। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुँच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,39,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के खेलगांव में आज से 25 जुलाई तक द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस अंडर 12 प्रतियोगिता में सभी 24 जिलों के 576 सरकारी स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सुरेंग ने बताया कि जूनियर स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए खिलाड़ियों के रहने, भोजन और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया के तहत रांची, धनबाद, देवघर और गिरिडीह में सेपक टकरा अस्मिता लीग का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला चरण 26 जुलाई को रांची और धनबाद में, जबकि दूसरा चरण 2 अगस्त को देवघर और गिरिडीह में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, पेपर लीक में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए देश में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। सिक्किम टनल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में BCCL के कोल नीर प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात। रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला एएमई और एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग सेंटर। और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: वर्ष 1956 में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
4: को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुंजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुंजा जी हाँ, वो है सुंजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से अच्छा जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें। शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज के।
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे? आपने सुने होंगे जयमाला में जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा? आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं? उसके बाद वंदे मातरम का गाना आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका? क्या अंतर आया जीवन में? ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर। आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की हैं, रख दी हैं। आप लिखते हैं कि रेडियो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है जो आप कर भी देते हैं। और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूं, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया। फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही। लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में अपने उड़ान भरता था बताइएगा, कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद। हमें लगता है बहुत सुंदर गीत जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी, ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात

मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहाँ के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊँ। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ही काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं, 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आ।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी को डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

0: ये हमारे कलाकार थी फागुनी पाठक, और इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन।

0: ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
6: ऑपोजिशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
7: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जय भारती। लीजिए सुनिए यह संदेश।
10: जय भारती।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंह भी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीडर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। श्री मेघवाल ने बताया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता

0: और इन्हें कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए कड़े कानून हैं।
1: युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी। प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस जो संबंधित हैं उनको तो कहा ही जाएगा, अगर उनको उनको लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बोला जाएगा और जल्दी से जल्दी ये कोर्ट स्थापित होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा, यही इनका उसका उद्देश्य।
0: जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जहां बयानबाजी तेज है वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। कल जहां भाजपा ने रांची में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था वहीं आज कांग्रेस इसी राह पर नजर आई, पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, सामूहिक प्रयास से एन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और उनके डिजिटाइजेशन के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का प्रपत्र डिजिटाइजेशन हो गया है उनके नाम अब सीधे 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में सुनिश्चित हो गए हैं। श्री कुमार ने राज्य के सभी विभागों और संस्थानों के लिए एसआईआर के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ एईआरओ द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को संबंधित विभाग या संस्थान प्राप्त होने की तिथि को ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर अपनी रिपोर्ट वापस भेजेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज कोडरमा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवलशाही थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत छापेमारी की है। वहीं एनआईए की एक टीम नवादा फुलवरिया के निकट एक व्यवसायी के विस्फोटक भंडारण केंद्र पहुंचकर भी जांच कर रही है। धनबाद में आज जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सहियाओं से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की।
2: नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ी है, इलाज का शोध बढ़ा है और इनकी मेहनत से ही पेशेंट हमारे सरकारी अस्पतालों में आना शुरू हुए। कृष्ण प्रदर्शन करने वाली सैयाओं को सैया किट के साथ सम्मानित किया। अभी हम लोग एचबीएनसी एचबीआई से किट देंगे, बच्चों के लिए किट होगा जिसमें बच्चों के ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा।
0: रांची में 26 जुलाई से डोरेंट कप टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने काउंटरों के जरिए निःशुल्क टिकट वितरित किए जा रहे हैं। पहले दिन 12,000 टिकट बांटे गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो के अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आज ही के दिन 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी।
1: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है हमारे पास, इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है।
0: जी।
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं, और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
0: जी।
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं, और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं, बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता

0: बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ,
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती ही हमारा चैनल है,
0: जी जी
1: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है।
0: जी
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन,
0: बिल्कुल
1: भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है,
0: जी
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
0: जी
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है।
0: जी
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी, मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाह लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है। तो यहां पर एक गाना बनता है, बताइए
1: जी हाँ,
0: कौन सा गाना
1: बिल्कुल
0: सुनवाए?
1: बिल्कुल,
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: या बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ
0: सुनते हैं,
1: जरूर से प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये गाना।
1: जी हाँ।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर FM आया, फिर SMS का ज़माना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव FM तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज FM इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव भी चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या BBC रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्ट वेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया FM, और FM ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और FM में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए FM उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो FM के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली FM ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए FM ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल्स सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है, और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं, और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में, सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे, पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती।

0: थी। माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं वडोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूँ तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला। और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
1: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़ा ऐसे चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक जैसे बोलते हैं, लेकिन अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
0: चुनौती के रूप में लिया,
1: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहां पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
0: जी, बिल्कुल।
1: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
0: क्या बात है,
1: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
0: जी।
1: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ
0: जी,
1: एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में, और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
0: शहर से बाहर नहीं जाना
1: झिझक रहती थी
0: जी जी,
1: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी, और
0: अच्छा।
1: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
0: क्या
1: था,
0: उसकी
1: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे। तो घर पे थोड़ा, मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
0: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी। तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
1: नहीं
0: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी
1: नहीं
0: बता दीजिए।
1: नहीं नहीं

0: बारिश होता
1: होगा नहीं,
0: जी
1: उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
0: जी जी तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती
1: जी, हाँ,
0: थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दें कि हम यहां पहुंच सकते हैं। और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं, तो अब यहां पर एक गाना आना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं?
1: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
0: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ। मीनाक्षी जी, हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये न करो वो न करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह।
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हाँ, बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीजें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट अच्छा। कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा, वही मेरी पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 डेज थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की, और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया। और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में।
0: क्या बात है,
1: 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है।
0: क्या बात है।
1: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
0: जी,
1: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।
0: बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती। और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहाँ पर मीनाक्षी जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी, आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहां से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहां पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी, या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलाते थे।
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
0: जी।
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम
0: जी जी,
1: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है
0: जी,
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
0: जी।
1: तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है, और रिटर्न टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
0: जी,
1: और ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई, और लकीली मेरा सिलेक्शन

0: हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज,
1: जी
0: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया क्योंकि काफ़ी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं,
1: जी
0: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी। और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वड़ोदरा और आज मुंबई,
1: जी
0: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए। और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
1: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा। तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें, और देखिए ना हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन है। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी
0: बहुत
1: बातें
0: अच्छा।
1: इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूँ और एक शिक्षक हूँ और सखी सहेली सुन रहा हूँ, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले,
0: हाँ, श्योर श्योर।
1: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है।
1: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था,
0: जी
1: सुनते हैं यही गाना।
0: जी जी

0: कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ
1: नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार,
0: जी
1: और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है।
0: जी
1: और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है
0: जी
1: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है
0: जी
1: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे।
0: जी
1: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी मेरी ओर से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज़ ऑफिस में रखें,
0: जी
1: घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे,
0: जी
1: अपने
0: जी
1: आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा।
0: जी
1: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि
0: बिल्कुल
1: एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी
0: जी
1: कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करें। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं,
0: जी जी
1: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इंपॉर्टेंट,
0: बिल्कुल
1: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की, आई
0: जी,
1: थिंक।
0: सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं, आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
1: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
0: जी,
1: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी, क्योंकि
0: क्या बात है
1: अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मैं, मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग।
0: क्या बात है।
1: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखे दूसरे सीखे। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
0: जी जी,
1: बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
0: जी जी,
1: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं।
0: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें। और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुँचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
1: क्या
0: है भाई,
1: बात है, हाँ?
0: आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर गाना है ये

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी,
1: परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
0: क्या बात है,
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए,
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर चीज का बैलेंस बनाए रखें, हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगी मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से। और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुँचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप
0: नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि ये जो छेपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी।
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छेपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा। अच्छा। मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नट्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन के साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया,
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ। आपकी जो पेश करने का अंदाज़ ही, आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाई। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी। और सर, ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर, मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर, मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया, छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है। कभी हम वहां रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहां पर।
1: बिल्कुल सर जी। और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि एक दिन पहले जान रहा था मेरे को आकाशवाणी।
0: जी, मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की? बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी, मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी, बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सर बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर, आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
0: जी, जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे हमने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल है?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो
0: इसके
1: आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत

0: ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही वह मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
1: हुआ। और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर, नमस्ते। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही है सर,
0: जी
1: बड़े
0: मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा है।
1: फोन कनेक्ट हुआ है। तो सर, विविध भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊं उतना कम है,
0: जी
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी, इंदौर आए थे हम, और
0: हाँ
1: जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
0: जी
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मी पना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी जी जी वो मेरा एक दौर था जब इस दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है,
0: जी
1: उसके बाद मेरी लाइफ में वापस एक यूटर्न आता है,
0: जी
1: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है सर।
0: बहुत शुक्रिया। और आज
1: जी
0: किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मेरा अभी, क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता दूं?
0: नहीं नहीं बिल्कुल गाइए।
1: रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर्स हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारमन।
0: सीतारमन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया।

0: विनीत भारती।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
0: मिस्टर यूनिस खान बोल रहे क्या?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मेरी प्रेजेंट सरप्राइज है। और कैसे है?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
0: बहुत अच्छा लगा है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
1: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
0: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
1: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: हम तो गजल का।
1: कौन सा?
0: मोहम्मद रफी का है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, यही वाला गाना।
1: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
0: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा। बोल यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन ही चलते हमारे गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
1: जी, हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
0: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा अच्छा बोलिए, कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है, मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है, इस बार सावन लेट है तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी। जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी। बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा अच्छा तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: साथ में पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है जो जख्म भी देती है और मरहम भी बन जाती है। लेकिन हाँ, इस परीक्षा में हर बार मैं तुमसे और दूर हो जाती हूँ। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर।

हर बार प्यारा नहीं होता, कभी कभी प्रेम क्रूर विभत्स और भयावह भी हो जाता है। नाना नाना, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच है प्यार, बहुत प्यारा। पर हाँ, तुम रहना तब भी जब किसी लड़ाई के बाद हमारे बीच चुप्पियां बिछी हों। सच कहती हूं, तुम्हारी मौजूदगी मेरी सुलह बन जाएगी। हाँ,

शायद मैं ज्यादा भावुक हूँ, शायद मेरी ही अपेक्षाएं ज्यादा हैं। हाँ, शायद प्रेम ऐसा ही होता है। कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है।

छाया गीत में आप हैं मंदाकिनी जोशी के साथ। उन सवालों के जवाब ढूंढने में दिमाग मत उलझाओ जिनका कोई जवाब है ही नहीं। हाँ, दूर निकल जाओ, बहुत दूर। कुछ पहाड़, जलती हुई लकड़ी की आंच, एक शांत मन। सच कहूं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। दूर कहीं कोई नदी चुपचाप कलकल कलकल बह रही हो, बस जीवन यूं ही चलता रहे अपनी धुन में, बिना शोर किए एकांतवास में।

अक्सर दिल इतना थक जाता है कि वो शिकायत करना छोड़ देता है। पर सोचिए, क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई आपसे दो शब्द कड़वे बोलेगा और हमारी पूरी हस्ती बिखर जाएगी, प्यार से हमारा विश्वास उठ जाएगा? नहीं। हाँ, ये सच है, कुछ लोग प्रेम नहीं रचते, वो विवाद रचते हैं, रणनीति रचते हैं, और तब सबसे गहरी बुद्धिमता स्पष्ट शब्दों में नहीं, संयमित मौन में होती है। हाँ, संयमित मौन में।

कई बार प्रेम में असफल हो जाने पर वेदनाएं हमें हमारे अस्थियों और मांस मज्जों से भी ज्यादा बोझिल लगने लगती हैं। भावनाएं मानो जम सी जाती हैं। किसी की बेरुखी या खामोशी हमें तोड़ देती है और जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां सब कुछ होते हुए भी जैसे सब खत्म हो गया हो। मन खाली हो जाता है। गुलजार साहब की एक पंक्ति याद आती है, दर्द होता रहा छटपटाता रहा, लेकिन हाँ जब घुटन महसूस होती है तो साहिर लुधियानवी याद आते हैं। ये महफिलें, ये तंज, ये ताने, ये जिंदगी है या कोई मजाक, वहां सवाल भी थककर चुप हो जाते हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सही परांजपे की, उजाली उनकी यादों की।
7: हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

आइए कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। शाम 5:35 पर युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा युवावाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुनर के साथ बदलता भारत विषय पर रश्मि पांडे की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शाम 6:02 पर ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा बाजरा की खेती एवं सोयाबीन तथा तिल में प्रबंधन। इसके साथ ही एक सफल किसान शंकर मेहता से की गई बातचीत भी आप सुन सकेंगे। शाम 6:30 पर कृषक भाइयों को संबोधित हमारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा समसामयिक कृषि कार्य।

शाम 7:15 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। 7:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत अंजनी कुमार तिवारी की वार्ता आप सुनेंगे, विषय होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनेंगे 8:15 से। क्षेत्रीय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सरहदे 8:30 से। फिल्मी गीतों का रोजाना का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा रात्रि 10:00 से।

श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की। अब आइए हम आपको अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की रूपरेखा बता दें। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आज कल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती कार्यक्रम का सेवा आपको दिया जाएगा। इसका प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। इस प्रकार हम अपनी सभा की समाप्ति करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे, और आप हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, कामयाब रहें, यही हम कामना करते हैं। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, सफलता के लिए आवश्यक है मस्तिष्क पर नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, कठिन क्षणों में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप यदि ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो कोई भी दुख आपको अधिक समय तक परेशान न कर सकेगा। आप स्वयं में अद्भुत क्षमताएं अनुभव करेंगे, आपकी सोई हुई शक्तियां शने शने जागृत अवस्था की ओर जाने लगेंगी। याद रखिए, वो व्यक्ति उतना ही अधिक महान एवं सफल होता है जो दुखों का साहस से धैर्यपूर्वक सामना करता है। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं दोस्तों, लेकिन जो लोग ये समय समझदारी से बिता लेते हैं वे स्वतः ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा रखो। प्रयत्नशील आत्मा कहती है कि मैं समुद्र पी जाऊंगी, मेरी इच्छा से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति एवं इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित ही पा जाओगे। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस पर उसके अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी उससे जुड़े लोगों के द्वारा किए गए किसी कार्य की अच्छाई या बुराई का भी उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कब आपके जीवन में दुख के पल आ जाएं। हो सकता है कि आप आसानी से अपना समय व्यतीत कर रहे हों, आशाओं की ज्योति अपनी आँखों में लिए प्रसन्न है, लेकिन तभी कोई ऐसा व्यक्ति आपको दुख के सागर में धकेल देता है जिसे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं। ऐसे क्षणों में बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। यही समय आपके धैर्य की परीक्षा और आपके मानसिक नियंत्रण की क्षमता को दर्शाने वाला होता है। दोस्तों, ये तो तय है कि समय के साथ आप उस दुख से उबर तो जाएंगे, लेकिन यदि आपने उस कठिन परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण ना रखा तो वो समय कभी वापस ना आएगा जिसे आप दुख में डुबोकर खो चुके होंगे। ये तो आपकी दोहरी हानि यहाँ हो जाती है दोस्तों, दुख भी सहा और समय भी नष्ट किया। इस रहस्य को ना समझने के कारण ही व्यक्ति प्रायः अपनी सफलता का मार्ग स्वयं ही कंटकयुक्त एवं लंबा बना लेते हैं। भगवान श्री राम को ईश्वर के सदृश पूजा जाता है, क्योंकि जो परेशानियां श्री राम जी ने सहन की थी, हमारी आपकी परेशानियां तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वस्तुतः सुख और दुख तो दो ऐसे एहसास हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं होते हैं वे सुखों में तो अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन दुखों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें कोई दूसरा मार्ग नज़र नहीं आता। वे ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर थक हार कर बैठ जाते हैं कि शायद उनकी किस्मत को यही मंजूर था। वे नहीं सोचते कि व्यक्ति अपनी किस्मत अपने कार्यों से जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है। इस एक भूल के कारण वे स्वयं ही अपनी असफलता का मार्ग खोल लेते हैं, जबकि समझदार लोग इस सत्य से परिचित होते हैं कि सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, उन्हें दोनों ही तरह से इनका सामना करना है। वे लोग सुख के क्षणों में आनंद की अधिकता से पागल नहीं होते और दुख के क्षणों में अपनी किस्मत का रोना रो कर थक हार कर नहीं बैठ जाते, बल्कि उनसे उबरने की कोशिश करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। वे सुख एवं दुख में एक सा ही व्यवहार करते हैं, उन्हें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना आता है। तो दोस्तों, वे भावनाओं में फंसकर समय का दुरुपयोग नहीं करते, प्रत्येक स्थिति में उनकी आँखें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती हैं।

आंखों से आंसू नहीं थमते, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। महात्मा जी ने कहा, वत्स, इस दुनिया में आत्महत्या से बड़ा पाप तो कोई नहीं है। अपने कठिन समय का साहस से सामना करो, प्रसन्न रहने का प्रयास करो, क्योंकि जिस स्थिति में तुम स्वयं को बताते हो उससे तुम्हें कोई लाभ तो होने वाला नहीं। यदि तुम केवल दुखी हो, लेकिन यदि तुमने ये समय यूं ही गुजार दिया तो बाद में पछताओगे भी। प्रत्येक मुसीबत का सामना इंसान को हंस कर करना चाहिए। याद रखें, सोने को अग्नि में तपाने पर ही वो कुंदन बनता है। व्यक्ति के आंसू थम गए, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट आई। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुसीबतों से हार मानने के बजाय उन पर विजय हासिल कीजिए। सफलताएं ऐसे लोगों का ही वर्णन करती हैं। साहित्यकार शमशेर जी की ये कविता ऐसी ही स्थितियों में व्यक्ति को दिशा निर्देश देती है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल ना हों। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों, ये हूँ कुछ बातें। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज भारत 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, जो देश में सार्वजनिक प्रसारण की शुरुआत तथा जागरूक एवं जुड़े हुए समुदायों के निर्माणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव है। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 23 जुलाई 1927 को भारत में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने सूचना और एकता फैलाने में मदद की। स्वतंत्रता के बाद इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा दिया। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। वर्ष 1957 में विविध भारतीय सेवा शुरू की गई, जिसमें मुख्य रूप से लोकप्रिय फिल्म संगीत दिखाया जाता था। वर्ष 1927 से रेडियो ने जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सभी के कल्याण और खुशी के लिए का पालन करना जारी रखे हुए है। तो दोस्तों, ये हुई कुछ बातें। चलिए अब आपको सुनवाते हैं रश्मि पांडे की वार्ता। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुनर के साथ बदलता भारत।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुनर के साथ बदलता भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मेकार्थी के अनुसार, यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। AI भारत के संदर्भ में, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित

0: एक नए युग की कगार पर खड़ा है, जहां प्रौद्योगिकी जिंदगियां बदल रही हैं और देश की प्रगति को आकार दे रही हैं। एआई अब केवल शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, यह हर स्तर पर नागरिकों तक पहुंच रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा एवं पहुंच को बेहतर बनाने से लेकर किसानों को फसल के बारे में पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने में मदद करने तक एआई दैनिक जीवन को सरल, स्मार्ट और अधिक कंडक्टेंट बना रहा है। यह व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं में क्रांति ला रहा है, शहरों को साफ और सुरक्षित बना रहा है, और तेज डेटा आधारित शासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बना रहा है। इंडिया एआई मिशन और एआई उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहले इस परिवर्तन के केंद्र में है। ये कंप्यूटिंग पावर तक पहुंच का विस्तार कर रही है, अनुसंधान का समर्थन कर रही है और स्टार्टअप्स तथा संस्थाओं को ऐसे समाधान तैयार करने में मदद कर रही है जिनसे लोगों को सीधे लाभ पहुंचे। भारत का दृष्टिकोण एआई को खुला, किफायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नवाचार समाज को समग्र रूप से उन्नत करे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वह क्षमता है जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती है। एआई डेटा, सेट एल्गोरिदम और बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके जानकारी का विश्लेषण करता है, पैटर्न पहचानता है और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। समय के साथ ये सिस्टम्स अपनी प्रदर्शन क्षमता में सुधार करती है, जिससे वे मनुष्यों के समान तर्क कर सके, निर्णय ले सके, संवाद कर सके। यह समावेशी दृष्टिकोण नीति आयोग की रिपोर्ट समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई अक्टूबर 2025 में भी परिलक्षित होता है। रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एआई भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन तक पहुंच प्रदान करके सशक्त भारत बना सकता है। यह रेखांकित करती है कि एआई आधारित उपकरण लाखों ऐसे लोगों की उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ा सकते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि प्रौद्योगिकी गहरी सामाजिक और आर्थिक खाइयों को पाट सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई के लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। वर्तमान में भारत में एआई इकोसिस्टम, भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 2,80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1,800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र है, जिनमें 500 से अधिक एआई केंद्रित है। भारत में लगभग 1,08,000 स्टार्टअप्स है और पिछले वर्ष लॉन्च हुए नए स्टार्टअप से लगभग 79% ने अपने उत्पादों का सेवाओं में एआई का उपयोग किया।
1: अभी आप सुन रहे थे रश्मि पांडे की वार्ता। विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुनर के साथ बदलता भारत। दोस्तों, आज चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस भी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म भाभरा गांव, अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर ज़िला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव ज़िला बेसवारा से थे। आज़ाद जी के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास भद्रक को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भावरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर जी का बचपन बीता उनकी माता

जी का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद जी का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल क्षेत्र स्थित भावरा गांव में बीता। अतएव बचपन में आज़ाद जी ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वो मनमनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपने देश के लिए शहादत पेश की। हम उनकी शहादत पर शत-शत नमन करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ दोस्तों युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राजधानी रांची के ऑडरे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज पेपर लीक मामले को लेकर लोक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्यों में लगे बेहतर कार्य करने वाले 7 बीएलओ और 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने सम्मानित किया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से एसआईआर में लगे बीएलओ और कर्मी मोटिवेट होंगे और बेहतर कार्य कर सकेंगे। पलामू पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और हत्या मामले की विस्तृत जानकारी दी है। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय साहिबगंज जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के बीच नशा मुक्ति विषय पर निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बाजरे की खेती की। बाजरे की उन्नत खेती के लिए जून जुलाई का समय सबसे उपयुक्त है। बलुई दोमट मिट्टी, 5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर और कतारों में बुआई सीड ड्रिल द्वारा से बेहतरीन पैदावार मिलती है। बीज को उपचारित करके बोएं और आवश्यकता अनुसार 3 से 4 सिंचाई करें। बाजरा गर्म और शुष्क जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा रहता है। इसे मुख्य रूप से अच्छी जल निकासी वाली हल्की बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें रेतीली और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण हो, उगाया जाता है। अब जुताई की बात करते हैं तो मई जून में खेत की एक बार गहरी जुताई करके धूप में तपने दें ताकि कीट और फंगस नष्ट हो जाए। कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करके और पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी और समतल बना लें और अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार प्रमाणित उन्नत बीजों का चुनाव करें। और राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के लिए RHB 173, RHB 177, RHB 223 बायो फोर्टिफाइड किस्में जैसे RHB 233, RHB 234 और हाइब्रिड किस्में जैसे PHB 2168 काफ़ी लोकप्रिय और फ़ायदेमंद हैं। मानसून की पहली अच्छी बारिश यानी मध्य जून से जुलाई का तीसरा सप्ताह के बाद बुआई करना सबसे अच्छा होता है। बीजों को कभी भी हाथ से बिखेर कर बिजाई नहीं बोना चाहिए। सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से कतारों में बुआई करें। पंक्तियों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक से उपचारित अवश्य करें। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो गोबर की खाद आप कितना डालें, तो खेत की तैयारी के समय 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर जरूर डालें। मिट्टी परीक्षण के अनुसार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP और DAP को संतुलित उपयोग पौधों की मजबूत जड़ों और शानदार बढ़वार में मदद करता है। बाजरा वर्षा आधारित फसल है, इसलिए इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर भी यदि बारिश न हो तो आप सिंचित क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। विशेष रूप से बालियां निकलते समय और दाना भरते समय खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है। फसल की बुआई के लगभग 70 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके दाने सख्त हो जाएं, कटाई के बाद बालियों को धूप में सुखाकर थ्रेसर से दाने अलग कर लें। उन्नत तरीके से खेती करने पर 1 हेक्टेयर में औसतन 25 से 30 क्विंटल दाना और 60 से 70 क्विंटल तक सूखा चारा प्राप्त होती है। तो ये हुई बातें बाजरे की खेती की। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे झीरा भगत की आवाज़ में लोकगीत, और कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं एक सफल किसान से दी गई भेंट वार्ता। विषय है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और खेती बाड़ी कार्य। भेंट वार्ताकार हैं शंकर मेहता, जो जमुने पलामू के हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम हैं बलामू जिला के जमुने गांव के पिछुलिया टोला में, और हमारी मुलाकात हो रही है एक सफल किसान शंकर प्रजापति से। शंकर जी हमें बता रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। शंकर जी बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड का आपने लाभ कब लिया?
2: हमने अभी थोड़ा दिन 4 दिन पहले भी लिया, और आज हम 10 साल से ले रहा हूँ। अच्छा। हर साल लेता हूँ, कभी साल में 2 बार, कभी 1 बार ये लाभ लेता हूँ। उससे उसको चुकाने के बाद फिर दोबारा उठाता हूँ मैं पैसा, जब भी लिया साल 6 महीना होते होते उसको चुकती कर देता हूँ, और दोबारा फिर जाके ले लेता हूँ। सीजन में ही लेता हूँ, जैसे गेहूँ का बुआई हो या धान का समय हो उस समय देता हूँ। और जब उसको धान का बीज उत्पन्न करने के बाद खेती किया, खेती काटने के बाद उसको धीरे धीरे चुका देता हूँ, और चुकाने के बाद जब गेहूं का समय आ जाता है फिर मैं जाके बैंक से किसान क्रेडिट से लोन लेता हूँ, और लोन हमें मिल जाता है, और फिर उसका बुआई करता हूँ, उससे हम लाभ उठाता हूँ।
1: कितने तक का आपने लोन लिया है?
2: 50,000। हमको वहाँ से आदेश है कि अगर आप और ज्यादा लेना चाहते तो ले लीजिए, मगर लेने से हमको भरना भी तो है, हम जितना चुकती कर पाए उतना ही लेंगे।
1: कैसा मानते हैं आप किसान क्रेडिट कार्ड?
2: अच्छा मानता हूँ, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारा लोन लेने से फायदा ही है कि समय पर पैसा मिल जाता है, और उस पैसे से जो सामान खरीदना है, जैसे धान का बीज हो गया, अपना खाद हो गया, दवा हो गया, जो फसल में बर्बाद होने के समय से पहले ले लेता हूँ, और समय पर उसको मैं अपना छिड़काव करता हूँ, और उससे अपना खेती अच्छा होता है, और खेती होने के बाद उसका कटाई करता हूँ, कटाई करने के बाद उसको बिक्री करके, और धीरे धीरे पैसे को मैं चुकती कर देता हूँ, उससे हमको लाभ मिलता है।
1: अब हम बातें करेंगे खेती बाड़ी की। अपने खेतों में आपने क्या लगाया अभी?
2: अभी तो थोड़ा अरहर बुना हूँ, और तिल, और अपना बादाम का खेती किया हूँ। अच्छा। और अपना धान का बीज तो किया, मगर मौसम खराब है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऊपर वाले बताएंगे। अच्छा। अभी मैं 4 दिन पहले भी बैंक भी गए थे। अच्छा। बैंक गए, बैंक जाने के बाद हमको पैसा मांगे, बोले किसान क्रेडिट कार्ड है? हम कि हाँ है। बोले कि ठीक है देता हूँ। हमको पैसा मिला, और पैसा भी रखा हूँ, और अपना खाद भी यूरिया ले लिया, DAP भी ले लिया हूँ, मगर मौसम खराब है, पता नहीं होगा ना हो, कैसे जानूँ।
1: आशा करते हैं मौसम जल्दी अच्छा हो जाएगा।
2: हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, ताकि जो पैसे लिया उस पैसे का हम अपना आगे के लिए अच्छा लाभ लें।
1: धान की नर्सरी की क्या स्थिति है?
2: अभी धान की नर्सरी तो खराब है, पानी नहीं हो रहा है, मुश्किल है, पानी की वजह से खराब हो रहा है, पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं।
1: सिंचाई की क्या व्यवस्था है?
2: सिंचाई अपना ऊपर वाले का व्यवस्था है, हमारा नहीं है व्यवस्था,
1: अपना कोई व्यवस्था नहीं।
2: तो पानी की इस्तेमाल करने के लिए उससे ज्यादा लोन लेंगा, तब तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे।
1: लोन लेना
2: 50,000 रुपया उठाइए करता हूँ, उतना मैं खेती करूँ कि मैं सिंचाई के लिए अपना नलकूप लगाऊं कि पंप लूं।
1: थोड़ी देर पहले आपने बादाम की खेती की बात की थी, हमारे किसान भाई कैसे खेती करें कि ज्यादा उनको फायदा हो?
2: जैसे मैं खेत पर गया, खेती करना है हमको बादाम का, तो उस खेत को पहले हम लोग से जुताई करते हैं, कम से कम इतना जुताई करूंगा कि उसका जो मिट्टी है से बिल्कुल धूल जैसा हो जाना चाहिए। अच्छा। और कम से कम उसका 5-6 इंच गहराई तक ले अच्छा जुताई होना चाहिए। देखिए, बादाम की खेती के लिए आपको सबसे पहले तो खेत को अच्छी से जुताई करना पड़ता है, उसके बाद अपना जो जानवर का जुताई होने के बाद उसमें गोबर डालता हूँ, गोबर डाल के फिर जुताई करूँगा, ताकि और अच्छा सभी जगह माटी मिल जाए। मिलने के बाद उसमें DAP खाद डालता हूँ, DAP खाद के साथ में जब बादाम के दाना बीज लाता हूँ बोने के लिए, उसके साथ दवा मिला करके और साथ में खाद, उसके बाद तब उसका खेत में बोता हूँ। अब बोने के बाद अभी जब मैं आज गया था वहाँ पर, अच्छा उपज अभी दिख रहा है, पौधा आ गया है 2-2 इंच का, 2-3 इंच का बिल्कुल अच्छा दिख रहा है अभी के समय में।
1: इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी लगती है?
2: इसमें बीमारी जो पत्ती खा जाता है, ऊपर का पत्ती, जड़ में भी कीड़ा आ जाता है। अच्छा। जैसे अभी पानी नहीं हो रहा

0: पत्ती में अब पीलू लग गया, छोटा छोटा कीड़ा आता है, वो कीड़ा लग गया, अब उस कीड़ा में हमको दवाई लेना होगा, दवाई मारना पड़ेगा, ना तो कीड़ा जब खा ही जाएगा पत्ती को तो मैं क्या बचा पाऊंगा। मौसम के लेकर के सवाल,
1: रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं कि जैविक खाद का?
0: नहीं, जैविक खाद का।
1: जैविक खाद कैसे बनाते हैं?
0: जैविक खाद अपना ये जानवर का जो गोबर हो गया उसको इकट्ठा करता हूँ, अपना लमसम 3 महीना तक इकट्ठा कर करना, आपस में सड़ जाता है, सड़ जाने के बाद 4 महीने के बाद उस खेत में उसको कोड़ करके ले जा करके छींटता हूँ तो ढेला जैसा हो जाता है, उसको कुदाल से या हथौड़ा से तोड़ तोड़ के धूल जैसा मिला देता हूँ, उसको टोटल खेत में छींट देता हूँ।
1: उसमें कुछ और नहीं मिलाते?
0: नहीं, उसमें उस समय कुछ नहीं मिलाते हैं, बाद में मिलाते हैं जब देखते हैं कि उस गोबर से नहीं उत्पन्न होने लायक है या खेत हमको संतुष्टि नहीं हुआ तो मैं उसके साथ में DAP खाद का इस्तेमाल करता हूँ। और जब उसका जनरेशन हो जाता है, 2 पत्ता या 4 पत्ता हो गया तो मैं यूरिया खाद डालता हूँ।
1: अच्छा।
0: और जब यूरिया डालूंगा तो अगर मालूम चल गया कि नहीं खेत अभी भी बीज अच्छा नहीं है तो उसमें का लक्षण हो जाता है, कोई पीला पत्ती हो गया, जड़ में कीड़ा लग गया तो फिर उसमें दवा का प्रयोग करना पड़ता है।
1: तो कीटनाशक कैसे इस्तेमाल करते हैं?
0: वो कीटनाशक के लिए तो अपना जाना पड़ता है दुकान दवा लेने, उसके बाद में छोटा मोटा मशीन गांव घर में मिल गया, हमारे पास नहीं है।
1: अच्छा।
0: और उसके साथ में दवा को मिलाता हूँ, लमसम 100 ग्राम दवा लेने के बाद 20 लीटर पानी का प्रयोग करता हूँ और मशीन के सहारे सब पौधा में डालता।
1: कोई घर से बना हुआ कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं?
0: नहीं नहीं, उस कीटनाशक का दवा घर से बना हुआ मेरे पास नहीं।
1: अब हम पुनः आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको कहाँ से मिली?
0: हमको इसके जानकारी ब्लॉक से मिला जी, हमने बराबर ब्लॉक आना जाना करते हैं जब हम घर पर रहें तो, बाहर चल गए तो नहीं कर पाते हैं, जब आए तो अपना ब्लॉक जाना, अपना जहाँ बीज मिलता है उसके जगह पर गया, थोड़ा समय वहाँ बैठा तो 2-4 आदमी बैठे हुए हैं तो कौन सा दवा ले रहे हैं, कौन सा खाद ले रहे हैं, कौन खाद लूँ या कौन दवा लेने से खेती अच्छा हो, वही दवा लेता हूँ या वो खाद लेता हूँ, तब उसके बाद हम अपना।
1: अगर हमारे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ लेना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उसके लिए हमको देखिए पहले तो खेत का अपना जमीन का रसीद मांगते हैं, जो आपका तत्काल रसीद हो, अगर जमीन आपके पास है तो जमीन का रसीद चाहिए, वो रसीद लेकर के ब्लॉक जाना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: ब्लॉक में फॉर्म मिलता है, फॉर्म उसमें अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आते हैं बैंक तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप पहले 4-5 बैंक से नोट डीज करवाइए। नोट डीज के मतलब कि आप कहीं दूसरे बैंक से कर्ज तो नहीं लिए हैं, अगर कर्ज लिए हैं तो नोट डीज कराने जाएंगे तो नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: और नहीं लिए हैं तो जिस बैंक का नाम आएगा 4-5 बैंक का उस बैंक वाले नाम पूछते हैं, नाम पूछने के बाद वो अपना देखेंगे कि हाँ इसका क्या है, अपना किसी का कर्ज तो नहीं है, नाम देखने के बाद अपना लोकेशन देखने के बाद नहीं मिला तो अपना साइन करके दे देते हैं, उसको फिर लेकर मैं वापस पुनः आ जाता हूँ वापस बैंक जिस जगह से हमको लोन लेना है, वो आपका फिर उसका बायोडाटा देखने के बाद वो अपना बोलते हैं ठीक है 1-15 दिन का टाइम दो और आपको तो हम पैसा दे देता हूँ। फिर वो पैसे को लेने के बाद हम आता हूँ घर, घर में आपस में सलाह करते हैं जो कौन सा अभी हमको बीज लेना है या खाद लेना है या दवा लेना है तो उस चीज़ का प्रयोग करता हूँ और उससे हम आगे का कार्रवाई चालू कर देता हूँ खेती के बारे में।
1: अभी हम बातें कर रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और हमारे साथ थे पलामू ज़िला के जमुने गांव के पिछुलिया टोला के सफल किसान शंकर प्रजापति जी। शंकर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई है। इन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आसानी से और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वह सभी किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और किसी कारणवश उनका कार्ड बंद हो गया है तो उसे दोबारा से चालू करना भी बहुत आसान है। किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज आवश्यकता है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ने की और अधिक से अधिक लाभ उठाने की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एक किसान शंकर प्रजापति से ली गई भेंट वार्ता, विषय था किसान क्रेडिट कार्ड योजना और खेती बाड़ी कार्य। इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा वर्मा। और कार्यक्रम में अब हम बात करते हैं।

सोयाबीन एवं तिल में प्रबंधन की। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन की खेती से बंपर पैदावार प्राप्त करने के लिए फसल के विभिन्न चरणों का वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। प्रमुख प्रबंधन विधियों में बीज उपचार यानी राइजोबियम कल्चर, समय पर निराई गुड़ाई, फूल आने और फली बनते समय सिंचाई का ध्यान रखना और इल्ली या पीला मोज़ेक रोग से बचाव शामिल है। खरपतवार प्रबंधन यानी निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो बुआई के 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन के बाद खेत की निराई गुड़ाई करें। चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से इमेज थापायर या क्विंजिलो फॉप एथिल का छिड़काव करें। सोयाबीन मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल है, जिसे सामान्यतः अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फूल आने पर यानी 20 से 40 दिन और फली भरते समय यानी 40 से 70 दिन बारिश न हो तो 1 से 2 हल्की सिंचाई जरूर करें और बेसल डोज यानी बुआई के समय खेत में प्रति हेक्टेयर लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर का उपयोग करें। सोयाबीन का जो कीट है वो प्रमुख कीट है तना मक्खी, गर्डल वीटल और सेमी लूपर इल्ली। इसके नियंत्रण के लिए यानी बचाव के लिए प्रोफेनोफॉस या इंडो साकार्ब का छिड़काव करें। इस रोग में पीला मोज़ेक और एंथ्रेक्नोज लगता है और इसका प्रमाणित किस्मों का चयन करें और रोग दिखने पर आप फफूंद नाशक का प्रयोग करें। तो ये हुई बात सोयाबीन की खेती की। और अब बात करते हैं तिल की खेती के प्रबंधन की। तो तिल की खेती में उच्च उपज और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रबंधन कार्य जो है, जैसे बीज उपचार करके पंक्तियों में बुआई करें, आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवार को रोकें, फूल आने और फलियां बनते समय नमी बनाए रखें और पौधे पीले पड़ने पर ही आप कटाई करें। तिल को कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कम उपजाऊ मिट्टी में प्रति एकड़ लगभग 15 किलो नाइट्रोजन, 33 किलो यूरिया बुआई के समय दें और बुआई के समय ही सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से फास्फोरस दें, जिससे पौधों को आवश्यक सल्फर यानी गंधक भी मिल जाता है।

और बात करते हैं सिंचाई और जल प्रबंधन की, तो तिल को 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने यानी बुआई के 35 से 45 दिन के बाद और फलियां बनते समय खेत में नमी होना अति आवश्यक है। पौधों की पत्तियों पर 3 से 4 पत्तियां आने के बाद आवश्यकता अनुसार आप पानी दें। फली पकने की अवस्था में नमी कम होनी चाहिए और फसल कटाई से पहले आप सिंचाई को रोक दें। बुआई के 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन के बाद ही आप निराई गुराई करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए टारगा सुपर 400 मिलीमीटर प्रति एकड़ का छिड़काव इसमें आप कर सकते हैं। और तिल के कोमल पौधों को शुरुआती अवस्था में कीटों से बचाने के लिए समय समय पर आप कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कटाई और भंडारण प्रबंधन की, तो निचली पत्तियों के झड़ने और फलियों का रंग पीला पड़ने पर ही आप कटाई करें। कटाई में देरी होने पर फलियां चटक जाती है और बीज गिरने से नुकसान भी होता है। कटाई के बाद पौधों के गट्ठर बनाकर धूप में सुखाएं और सबसे पहले आप गहाई करें। भंडारण से पहले आप दानों में नमी का प्रतिशत 8 से 10% से कम होना चाहिए। तो अभी हम बातें कर रहे थे तिल में प्रबंधन की, और इसके पहले बता रहे थे सोयाबीन में प्रबंधन की। और इस चर्चा के बाद हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बातें करेंगे समसामयिक कृषि कार्य की। तो मौसम नम और अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवा के झोंके आदि, जमीन के पास तेज हवाएं चलेंगी और फसलों का गिरना, फलों का टूटना भी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई मध्यम खेत में आगामी दिनों में होने वाले वर्षा जल के साथ साथ ऊपरी खेतों से पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में करके पानी जमा कर रोपा करें। जिस किसान के पास ऊपरी खेत अभी भी पड़ती रह गया है, वे कुलथी, उड़द, मूंग या विभिन्न सब्जियों की खेती के लिए तैयारी करें और किसानों को आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए। कटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। भारी बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। बारिश और बादल की स्थिति से खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसानों को इसकी निरंतर निगरानी करती रहनी चाहिए। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जाल फसल के रूप में गेंदा यानी अफ्रीकी गेंदा का उपयोग उपयोगी है। बात करते हैं रागी की, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई करें। रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। जल्दी बोई गई मक्के की फसल 4 सप्ताह की अवस्था में है, इसलिए फसल में निकाई गुड़ाई करें और 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के दर से डालें और मिट्टी चढ़ा दें। लंबे समय तक बादल छाए रहने और वर्षा के कारण मक्के में जीवाणु, डंठल सड़न रोग के संक्रमण की संभावना रहती है, विशेषकर अंकुरण से वानस्पतिक अवस्था तक। डंठल के सड़न को नियंत्रित करने के लिए सूखे दिनों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित रसायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा 30 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ को 2 बार में डालने, इसमें इस रोग की गंभीरता कम हो जाती है। वर्षा की कमी को देखते हुए किसान भाई धान की फसल में छटाई करें ताकि पानी और पोषक तत्वों के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम की जा सके। छटाई की गई पौधों को पशुओं को खिलाएं। सीधी बुआई वाले धान की फसल 3 से 4 हफ्ते की अवस्था में है, क्योंकि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, इसलिए किसान भाई निराई गुराई और खरपतवार नियंत्रण के लिए जाएं। 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें, उसके बाद निराई गुराई करें, खाली जगहों को भरें, खाद डालते समय अतिरिक्त पानी निकाल दें और 1 दिन के बाद पानी को खेतों में डाल दें। अब बात करते हैं अरहर की, तो समय पर बोई गई फसल वानस्पतिक अवस्था में है। ढलान की तरफ नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम करें। जो किसान भाई अभी भी बुआई का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ज्वार, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, बीन्स, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल अपनाने का सुझाव है। अंतर फसल के मामले में अरहर, प्लस ज्वार पंक्ति अनुपात 1:1, अरहर प्लस मक्का में पंक्ति अनुपात 1:1 और अरहर प्लस मूंगफली में पंक्ति अनुपात 1:3, अरहर प्लस सोयाबीन पंक्ति में अनुपात 1:2 और अरहर प्लस उड़द या मूंग पंक्ति में आप रोपें अनुपात 1:2 और अरहर प्लस भिंडी इसमें आप अनुपात 1:1 बनाए रखें और तदनुसार उर्वरक दें। अब बात करते हैं टमाटर की, तो जुलाई में टमाटर की नर्सरी में पौध लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडे 4 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बोने से 24 घंटे पहले बीज उपचारित करें और इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा शंकर 1, सुरक्षा। बात करते हैं जरवेरा की, तो जरवेरा की फसल में फफूंद रोग के प्रकोप देखे जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए किसान भाई वेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हर पौधों के जड़ों के पास डालें। तो ये हुई बातें समसामयिक कृषि कार्य की, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम किसान वाणी में। कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता एक सफल किसान कपिल देव ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता जो तुकवेरा नामा बाजार पलामू के हैं और विषय है खेतीबाड़ी और योजनाओं पर भेंट और इसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।
1: आज हम बातें करेंगे एक सफल किसान से जो नावा बाजार प्रखंड के तुकबेरा गांव के निवासी हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कपिल देव ठाकुर है, ग्राम तुकबेरा, प्रखंड नावा बाजार, जिला पलामू।
1: आपके गांव की मिट्टी कैसी है सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे।
2: हमारे गाँव की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, फिर भी हम लोग मेहनत के बल पर हर एक तरह के खेती को कर रहे हैं।
1: अच्छा, और सिंचाई की क्या सुविधा है?
2: किसान अपने मेहनत से, अपना कुआं से, अपना बोर से, नदी से, बगल में गांव के बगल में नदी भी है, नदी से भी अपना सिंचाई करते हैं लोग। जिसका अपना नहीं है वो दूसरे के यहाँ से भाड़े पर लेकर के भी अपना खेती का काम करते हैं लोग, लेकिन खेती मेहनत से करते हैं लोग, जिसके चलते हमारा तुकबेरा गाँव खेती में बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी में कौन सा तत्व आपका है, कौन सा नहीं है, इसके लिए सरकार की एक योजना है मिट्टी जांच कराने का।
1: अच्छा।
2: मिट्टी जांच करा करके अगर जिनके पास सॉयल हेल्थ कार्ड बन गया है या जो किसान को नहीं बना है तो सॉयल हेल्थ कार्ड बनवा लें, उसमें मिट्टी का परीक्षण करके और किसानों को ये बता दिया जाता है कि मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी है, उसको संतुलित मात्रा में देने के बाद पौधा कम से कम जो है से डैमेज होता है, बीमारी कम से कम लगने का चांस रहता है। उसके बावजूद भी अगर बीमारी हो जाता है तो उसको देख करके उसके लक्षण के हिसाब से किसान अगर समझ रहे हैं कि इस तरह की बीमारी है, अपने समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हरेक गांव में किसान मित्र हैं उनसे संपर्क करें। ब्लॉक स्तर पर बीएओ हैं, बीटीएम हैं, एटीएम है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जेडारेस है, आत्मा है। किसान को कॉपरेट करने के लिए सरकार की ओर से पूरे जो है से व्यवस्था है, लेकिन किसान को थोड़ा सा जगने की जरूरत है।
1: जागृत होना पड़ता।
2: अगर जागरूक किसान है तो उनको कहीं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान कॉल सेंटर भी है, किसान कॉल सेंटर में बात करें उसमें भी उनका निदान मिल जाता है। केवीके का नंबर हर जगह उपलब्ध रहता है। वैज्ञानिकों का जो है से ये सोच है कि किसान को सहयोग भरपूर मिले तो वहाँ से भी जो है से

किसान संपर्क में रह के अपना समाधान पा सकते हैं। जेडआरएस में भी ये सुविधा उपलब्ध है, आपके आत्मा में उपलब्ध है। जागरूकता लाने की जरूरत है, किसान का समस्या का समाधान उनके दरवाजे पर हो जाएगा। किसान प्रतिदिन खेतों में अपना घुमा करें, देखें फसल में

0: पशुपालन जो है से कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। कृषि कार्य जो है से और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक। आज जैविक खेती पर सरकार जोर दे रही है, केमिकल यूज करके और खेती जो कर रहे हैं तो वो विष मिला हुआ खेती हो रहा है। तो जैविक खेती करने के लिए आपको पशुपालन करना होगा।
1: सरकार द्वारा एक अति महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, किसान क्रेडिट कार्ड, आपने इसका लाभ लिया है?
0: जी, किसान क्रेडिट कार्ड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इससे गरीब किसान ही नहीं, जो बड़े किसान हैं उनको भी फायदा हो रहा है और जो कमजोर किसान हैं उनको फायदा हो ही रहा है। हम भी किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, 1.5 लाख का मेरा किसान क्रेडिट कार्ड है और उससे अच्छा मेरा कारोबार चलता है। यानी कि बैंक से समय पर हमको जिस चीज की जरूरत है, खाद लेना है या दवा लेना है, बीज लेना है, हमको किसी दूसरे के पास इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ और कार्ड से ये कर सकते।
1: आप एक सफल किसान हैं, आपने कृषि के क्षेत्र में अब तक अपनी कौन कौन सी मुख्य भूमिका अदा की है अपने गांव में?
0: हम लोग सब मिलजुल करके खेती करते हैं, उसमें जो हमारी जानकारी होती है, हम प्रशिक्षण में भी जाते हैं, कुछ किसान मेरे साथ चलते भी हैं। मैं कृषि में खेती का काम तो करता ही हूँ, बागवानी भी है, पशुपालन भी है, बकरी पालन भी है, मछली पालन भी है, तो इस तरह का मेरा सब काम चलता है। एक अन्न का ही खेती न करें किसान, उसमें जो है से अपने क्षमता के हिसाब से सब कुछ करें, पशुपालन भी करें। अगर उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो दो ही गाय रखें, एक ही गाय रखें, दो ही बकरी रखें, तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं कुछ में नुकसान हो रहा है तो कहीं कुछ में फायदा हो जाएगा।
1: अब आप अपने किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए?
0: मैं आपको बता दूं ये कृषि कार्य करके मैं क्या क्या किया। हमारी दो बेटियां हैं, दोनों को ग्रेजुएशन करा दिया, दो बेटे हैं उनको एक इंजीनियर बना दिया, एक बैंक में है कृषि कार्य से, और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है जो पढ़ रहे हैं। दोनों बेटी को शादी कर दिए अच्छे घराने में और अपना खेतीबाड़ी सब ढंग का चल रहा है, अपना रहन सहन अच्छा है। सरकार की ओर से हमें हर समय जो है हर सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। मैं 2018 में जो एक योजना था माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग सलाह से कि किसानों को विदेश प्रशिक्षण में परिभ्रमण में भेजा जाएगा, तो पलामू की ओर से चयन करके हमें भेजा गया था। मैं इजराइल गया था, वहां से देख करके आया हूं और यहां अपने यहां उसको कार्य को उतारने में भी प्रयासरत हूं। वहां मुख्य रूप से कम पानी में बहुत अच्छा खेती करने के लिए हम लोगों को दिखाया गया और हम कर भी रहे हैं। जैसे कम पानी में ड्रिप से खेती करना, स्प्रिंकलर से खेती करना, तो इस तरह का कार्य मैं भी कर रहा हूं। हमारा पलामू जो है से सूखा क्षेत्र है, ड्राई जोन है और इसमें कम पानी में बहुत अच्छा खेती करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बस उसको करने की जरूरत है। कम पानी में बहुत अच्छा खेती हो सकता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और किसान भाइयों को अपने गांव के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे खेती बाड़ी योजनाओं पर भेंट वार्ता करते हैं कपिल देव ठाकुर जो तुकबेरा नावा बाजार पलामू के थे, इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा वर्मा। और कार्यक्रम में अब बात करते हैं जल्द तैयार होने वाली फसलें बरसाती भिंडी मूली और लोबिया की। तो बरसात के मौसम में कम समय में तैयार होने वाली जो प्रमुख फसलें हैं बरसाती भिंडी मूली और लोबिया है, जो बुआई के बाद लगभग 45 से 60 दिन के भीतर पैदावार देना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं बरसाती भिंडी की, तो इसका बुआई का समय है जून से जुलाई मॉनसून की शुरुआत में, और तैयार होने का जो समय है बुआई के 45 से 50 दिन के बाद पहली तुराई शुरू हो जाती है। और इसकी खासियत ये होती है कि अधिक पैदावार देने वाली और बरसात में तेज़ी से बढ़ने वाली फसल होती है। और बरसाती मूली

का जो समय है वो है जुलाई से अगस्त बुआई का, और तैयार होने का समय है केवल 40 से 45 दिन में फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। और इसकी खासियत ये है कि यह बहुत ही कम समय में झटपट तैयार होने वाली जड़ वाली फसल है। और लोबिया की बात करते हैं तो इसका भी समय जो है वो जून से जुलाई यानी बरसात का सीज़न में है, और तैयार होने का समय लगभग 45 से 60 दिन है, और इसमें फल और फलियां मिलने लगती है 45 से 60 दिनों में। और इसकी खासियत है कि यह एक पौष्टिक फलीदार फसल है जो बारिश के पानी में आसानी से बढ़ती है।

बात करते हैं कद्दू वर्गीय लौकी, कद्दू, करेला, खीरा सब्जियों में कीट प्रबंधन की। तो सब्जियों में कीट प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाएं। लाल भृंग और फल मक्खी के नियंत्रण के लिए खेत की गहरी जुताई करें। नीम के तेल 0.5% का छिड़काव करें और फेरोमैन ट्रैप का इस्तेमाल करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मौसम और फसल के अनुसार कई हानिकारक कीट लगते हैं। जैसे लाल भृंग कीट लगता है इसमें, यह कद्दू, लौकी और खीरे की पत्तियों और छोटे पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करने से छुपे हुए प्यूपा नष्ट हो जाते हैं। शुरुआती अवस्था में नीम के तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें और अधिक प्रकोप होने पर इमीडा क्लोरोप्रिड या कारवारिल का छिड़काव करें। दूसरा जो कीट है वो है फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई। यह मादा मक्खी छोटे फलों में अंडे देती है जिससे अंदर इल्लियां फल को सड़ा देती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में गहरा दबा दें। व्यस्क मक्खियों को पकड़ने के लिए फेरोमैन ट्रैप या मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स का उपयोग करें। एक और कीट है वो है माहू या चेपा कीट। यह छोटे छोटे कीट पत्तियों से रस चूसते हैं और चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमीडा क्लोरोप्रिड 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी या थायोमेथोसक्सम का छिड़काव करें। एक और कीट जो है वो है पत्ती सुरंगक। यह कीट पत्तियों के अंदर सुरंग बनाकर हरा भाग को खा जाते हैं जिससे पत्तियाँ सूखने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग फायदेमंद रहता है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए कुछ सावधानियां हैं, जैसे एक ही खेत में बार बार कद्दू वर्गीय फसलें न उगाएं। मित्र कीटों जैसे लेडीबर्ड बीटल को पनपने दें जो माहू को खाते हैं। तो यही बातें कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन की।

आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 93% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 68% रिकॉर्ड की गई। और चलते चलते आज की नसीहत में हम बात करते हैं जल संरक्षण की। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बर्बादी को रोकना और भविष्य के लिए स्वच्छ जल को बचाना। पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, इसलिए दैनिक जीवन में बाल्टी का उपयोग करके रिपेयरिंग के जरिए नल के रिसाव को रोककर

0: वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाकर हम जल बचा सकते हैं। धरती के लगभग 71% हिस्से पर पानी होने के बावजूद इसका 97% भाग खारा है। मानव उपयोग के लिए ताज़ा मीठा पानी मात्र 1 से 3% ही उपलब्ध है। अनियंत्रित दोहन और घटती बारिश के कारण भूमिगत जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर जल संकट का खतरा है। हमारी खाद्य प्रणाली पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है। बिना जल संरक्षण के भविष्य में कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कुछ दैनिक आदतें हैं किसान भाइयों, जैसे ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल खुला ना छोड़ें, शॉवर के बजाय बाल्टी और मग का उपयोग करके पानी की बचत करें, गाड़ी या आंगन धोते समय पाइप की जगह बाल्टी और पोछे का इस्तेमाल करें, घर या कार्यालय में किसी भी लीक होते नल या पाइप की तुरंत मरम्मत करवाएं। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम किसानवाणी से अब दीजिए रागिनी कुमारी को अनुमति। नमस्कार।
1: सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।
1: आया देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई

0: रखें। पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें। हमेशा मच्छरदानी लगा कर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द एनुमरेशन प्रपत्र भरने की अपील। रांची में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी के रांची स्थित कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री साहू ने आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्यालय का घेराव किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव किया वह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
1: भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए आए थे। लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी करने का काम किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए और पुलिस जो वहां पर तैनात थी एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रहे थे।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज हजारीबाग में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने जेपीएससी पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार में जितनी बार जेपीएससी की बहाली हुई वह विवादों में रहा है। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों के कारण राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
2: जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन के राज्य में 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर परीक्षा विवादों में घिरा रहा और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश वो करप्ट लोगों को नियुक्त। झारखंड की बच्चों की भविष्य को

0: बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे।
1: इधर रांची महानगर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने आज पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलोकतांत्रिक व्यवहार किया। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
2: जो लोग एक लोकतांत्रिक संघर्ष को खूनी संघर्ष से बदलना चाहते हैं और इस तरह से एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुद्दा कहीं ना कहीं गौण हो जाए, उन्होंने ईंट पत्थर चलाकर खून हमारा बहाकर हमारे संकल्प और मजबूत के छात्रों की लड़ाई में भी साथ है। कौन लोग पत्थर चला रहे थे, वीडियो फुटेज हमारे पास है और हम उन पर एफआईआर यहाँ कर रहे हैं।
1: राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध किया है कि अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं। श्री कुमार ने बताया कि किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर दूसरा इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या ईसीआई नेट पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल ने नागरिकों विशेषकर युवाओं से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
3: आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, वनों, खनिज संपदा तथा समृद्ध जनजातीय संस्कृति से संपन्न राज्य है। इसलिए विकास की हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो।
1: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार की योजनाओं से झारखंड के पर्यटन विकास को मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2018-19 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट, रामरेखा धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम की विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। जानकारी के मुताबिक अब तक हुई जांच में मैगजीन संचालक लोकाई निवासी शंकर यादव और नवाडी निवासी महेश कुमार मेहता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक पिस्तौल, 3 कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक जेवर दुकान और शराब दुकान में हुई चोरी मामले में जमशेदपुर और आदित्यपुर से अंतर्राज्य गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी

0: ग्रामीणों के पास से चोरी किया गया चारपहिया एक वाहन बरामद किया गया है।
1: जो लोग फैमिली इन्वॉल्व थे उन सभी की हम लोगों ने अरेस्टिंग की और उन्हीं की निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने कवरी भी की है। जो भी ज्वेलरी चुराई थी उनके द्वारा वो हम लोग को बरामद हुई है और जो लिखा भी लोगों से चुराया था वो भी हम लोग को काफी अच्छे खासे सामने में बरामद हुआ और ये लोग जो पकड़ाए हैं इनका काफी बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र और सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने श्री सोरेन को रांची में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द इन्यूमरेशन प्रपत्र भरने की अपील। रांची में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य साहिबगंज जिले में भी चल रहा है। इसके तहत विभिन्न चरणों में कार्य किया जा रहा है। 29 जुलाई तक इनोमरेशन फेज होगा तथा इसके अगले दो माह तक दावा एवं आपत्ति का फेज होगा। 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों राजमहल, बोरियो और बरहेट में क्रमशः 36,900, 50,400 और 27,000 अनमैप्ड वोटर हैं। इन क्षेत्रों में 89.8%, 82.5% और 87.8% वोटर्स का मैपिंग किया जा चुका है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक दुबे ने बताया,
2: अगर अनमैप्ड इलेक्टर्स की बात करें तो वो संख्या एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36,900 की है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,400 की है और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27,000। तो तीनों एसीज को मिला लें तो लगभग 1,14,000 की है। मैपिंग का प्रतिशत जो है क्रमशः राजमहल, बोरियो एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में 89.8%, 82.5% एवं 87.8%।
1: केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और नर्सरी विकास योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसान भी लाभ लेकर सफल हो रहे हैं। इसके तहत नर्सरी अधिष्ठापन के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। किसान इससे तैयार पौधों को लगाकर इसके फल से अचार, सॉस, पन्ना, शरबत का उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने बताया,
3: हमारे उद्यान विभाग के तरफ से बहुत से किसान जुड़े हैं और राज्य सरकार की योजना उद्यान विकास की योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जिसमें कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गौतम राय जो कि हमारे राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। पहले वो परंपरागत खेती के थ्रू ही अपना मतलब करते थे जिनमें उनका ज्यादा बचत नहीं हो पाता था। उसके बाद उनको पता चला, ये योजना लिया और आज वह पूरे जिले में ही नहीं पूरे राज्य में, राज्य के लिए, कृषकों के लिए आज वह गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों का उत्पादन कर रहे हैं।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में युद्ध और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किए गए तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। इसमें एनसीसी, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रकार के मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना है। साहिबगंज के अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया,
4: आज मॉक ड्रिल किया गया। ये तो बम पाए जाने की सूचना को लेकर के किस तरह से प्रशासन किस तरह से एक्टिविटी करी, दूसरा कितनी स्तर और तीन तो नहीं दिखे आपने और जो पटा हुआ उसको लेकर के किस तरह से प्रशासन करेगा। इमीडिएट कॉल गया कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम के द्वारा हॉस्पिटल को फोन किया, पुलिस को फोन किया और जो रस्ता में फोन गया और आगे के किस तरह से जो एक्टिविटी किया गया।
1: विगत कुछ दिनों में हुई बारिश से जहां एक ओर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धान की खेती में लगे किसानों में से ज्यादातर किसानों ने धान की रोपाई भी कर लिया है। केवीके और कृषि विभाग किसानों को आवश्यक परामर्श भी उपलब्ध करा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
2: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से 15 दिनों के बाद रेडियो कार्यक्रम, हाँ पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम या पत्रिका जो कहें, आयुष्मान लेकर एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं कि आपके अंदर जानकारियां दें, आप तक जानकारियां पहुंचाएं और उस जानकारियों का लाभ उठाएं, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। हर एपिसोड दर एपिसोड हम एक विशेषज्ञ डॉक्टर को लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं और किसी खास बीमारी के विषय में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, कैसे ठीक हुआ जा सकता है ये भी बताते हैं, कहाँ कम पैसा लगेगा, आयुष्मान भारत कार्ड है उससे भी इलाज हो सकता है, ढेर सारी जानकारियां हम आपको देते हैं। हमारा जोर बहुत रहता है बच्चों पर। हाँ, आप लगातार सुनते होंगे चाइल्ड कार्डियक सर्जरी, चाइल्ड कार्डियक प्रॉब्लम के विषय में, बच्चों के हृदय रोग में अगर कोई समस्या हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे अस्पताल में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में भी बताते हैं, चाहे शरीर में किसी भी तरीके का विकार हो जाए उसको ठीक होना ही होगा, जी हाँ, अगर सही तरीके से इलाज हो जाए। और ये कार्यक्रम जो है आप तक हमें पहुंचाने में, यानी आपके राजेश को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हमने कहा नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास, यहाँ हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। हाँ, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं आकर यहाँ पर और बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, जी हाँ, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलता है। आपके शरीर में कोई भी विकार होना या हेल्थ से

0: संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे सीधे डायल कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040। ये नंबर है, इसको डायल करके जानकारियां ली जा सकती हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और जिससे हमारा अनिष्ट भी होता है, फिर हम उससे उबर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका निदान भी है, जैसे बर्न, जल जाना, हाँ इसका भी निदान है। ढेर सारी बातें, जलने या बर्न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए, कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी क्या है, ढेर सारी बातें आज हम जानेंगे और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से हम उनका परिचय दिलवाते हैं।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णलता शिरोमणि है, मैं एक बर्न्स और प्लास्टिक सर्जन हूँ सर। मैंने MBBS मेरी डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से किया हुआ है, MS जनरल सर्जरी मैंने एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया हुआ है और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई मैंने तमिलनाडु में चेन्नई से किलपॉक मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है सर।
0: डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी बातें करनी है, एक जिज्ञासा भी है, क्योंकि बर्न, जलना अपने आप में बहुत दुखदाई है, सुनने में ही बहुत एकदम गजब लगता है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ये क्या है, दोनों का तालमेल इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए।
1: जी सर, सो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सर, इट्स नॉट, दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, तो ये हैंड इन हैंड साथ के साथ जाते हैं सर। जैसे कि बर्न्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है, गर्म पानी के गिर जाने से, गर्म चाय के गिर जाने से, थोड़ी सी लापरवाही, अभी जैसे खेतों में जो बर्न जला, क्रॉप्स जलाने के बाद जो वापस से खेती करते हैं सर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं। तो आग तो लग जाती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट का क्या करना है, कैसे डील करना है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो वहीं पे जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है साथ के साथ, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ के साथ चलती हैं। तो जैसे बर्न्स के पेशेंट जो है, मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ड्रेसिंग करके ठीक हो जाएगा, पास में रख के, घर पे रख करके ठीक हो जाएगा, पर छोटा से छोटा बर्न जो है सर, काफी बड़ा घाव बन सकता है, काफी गहरा घाव बन सकता है, जो कि मे बी लाइफ टाइम में कभी ना ठीक हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं सर। तो इसके लिए जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए सर इस चीज की पढ़ाई करना, इसके लिए काफी पैशनेट थी मैं, तो जिसके लिए मैंने इस चीज की पढ़ाई करी है।
0: बिल्कुल सही, जानकारियां पहुंचाना, हाँ बहुत बड़ी बात है, जानकारियां होंगी तभी तो कोई कुछ करेगा। और ये रेडियो कार्यक्रम पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, जिसे हम नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ से लेकर आ रहे हैं, जो जमुआर सासाराम रोहतास में है, जानकारियां पहुंचाते हैं और निदान भी बताते हैं। पहले डॉक्टर साहिबा से हम सवाल पूछें, उससे पहले हम कुछ गुजारिश करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि किचन में संभल कर काम करें, गर्म पानी अगर आसपास है तो ध्यान से चलें, कहीं भी अगर खेत में पराली जलाई जा रही है या जला है पहले से, तो किसान भाई या उनके परिवार के लोग जाने से पहले सोचें, यानी सतर्क रहें, सतर्कता में ही सब कुछ है। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए कि अगर जो जल जाएं, हाँ तो सबसे पहले क्या करें जलने के बाद?
1: तो सर जब सबसे पहला आग लग जाए सर, जैसे किसी को भी गर्म पानी गिर गया, बहुत तरीके होते हैं, गर्म पानी गिर गया, गर्म स्टीम जैसे भाप, गर्म भाप से हो सकता है ये सब गिर गया, या आग लग जा रही है किसी चीज से, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है सर, उस आग को पहले तो पेशेंट को उस एरिया से, आग वाली एरिया से जहां से लगा है वहां से दूर करके जल्दी से उस आग को बुझाना। अब आग को कैसे बुझाया जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी जल्दी पानी वगैरह डालते हैं या कंबल डाल देते हैं, सही तरीका है, लेकिन कितने देर के लिए रखना है। पानी में जैसे आग लगी है, जैसे आपने आग बुझा दी है, पानी में कितने देर के लिए रखना है, कभी कभी लोग एक एक घंटे छोड़ देते हैं पानी चला करके, कभी कभी काफी कम समय 5 मिनट, सो लगभग जो है 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर जो है

0: पेशेंट को रखना है, पानी डालना है, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए जी। तो उससे क्या होगा सर, जो जलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होगी, खत्म नहीं होगा लेकिन वो स्लो होगा। तो स्लो होने से आगे जो है मरीज को काफी फायदा होगा सर आगे की ट्रीटमेंट में। तो जब ट्रीटमेंट है ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाती है, जैसे आग लगी उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, पेशेंट के अटेंडर्स जो उनके साथ वाले हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है सर। तो जिस वक्त तक वो हॉस्पिटल पहुंचे पेशेंट की काफी मदद हो सकती है सर, जान तक बच सकती है।
1: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में पहली दफा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ, डॉक्टर स्वर्ण लता बैठी हैं, इनसे बातचीत हो रही है और बहुत सारी जानकारियां हमने ली और आगे भी लेंगे। नंबर नोट करें, अगर किसी के साथ ये समस्या आ जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर आ जाए तो इस नंबर को डायल करें या पहले से डायल करके जानकारियां और ज्यादा ले लें। ये नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम हाँ का नंबर है, और नंबर है 620-680-3040,

डायल करें या पहले से डायल करके जानकारियां और ज्यादा ले लें। ये नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जम्मू आर सासाराम हाँ का नंबर है, और नंबर है 6206803040

0: जहां तक सवाल है कि कौन जल्दी आए और कौन लेट आए, बर्न बहुत ज्यादा है, शरीर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बर्न आपके चेहरे पे है, पेशेंट के चेहरे पे है, पेशेंट के गले में गया है, या फिर ऐसी जगह पे पेशेंट ऐसे कमरे में बंद रहा है जहां पे बर्न हुआ हो और वो धुआं जो है उनके नाक मुंह के द्वारा सूंघा गया हो, तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली हायर सेंटर, टर्शरी सेंटर भेजना बहुत ही जरूरी है। बच्चे, वल्नरेबल पॉपुलेशन सर, जैसे कि प्रेग्नेंट माताएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इमीडिएट ट्रांसफर बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से सर, जैसे यंग लोग भी हो गए, तो अगर काफी ज्यादा बर्न हुआ पड़ा है, हाथ मुंह पांव अगर हाथों में है, तो तुरंत भेजना जरूरी है। उसके अलावा सर, काफी चीजें होती हैं पेशेंट के, छोटे से छोटे बर्न भी इमीडिएटली मेरे हिसाब से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि किसको क्या अंदरूनी बीमारी, डायबिटीज, आजकल इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब कुछ हो रखा है सर, तो वो आपको अस्पताल पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि किसको क्या दिक्कत है, और हर चीज को, हर बर्न को ट्रीटमेंट करने की मोडालिटी अलग अलग होती है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि यदि जैसे भी बर्न हुआ है, जिस वक्त भी हुआ है, बुझा करके 15 मिनट पानी में डाल करके, सफेद कपड़ा, साफ स्वच्छ कपड़े से उसको लपेट करके, आप तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेकर के जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और यदि वहां से टर्शरी केयर सेंटर भेजा जा रहा है तो आप इमीडिएटली आ जाएं।
1: आप इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी आ जाएं, इग्नोर नहीं करें। एक बात बताइए, हाँ डॉक्टर साहिबा, हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार नंबर बता देते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं? ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आप पहले इसे बताइए, अगले एपिसोड में आपसे और भी सवाल पूछेंगे।
0: तो हमारे यहाँ पर बर्न में एवरीडे के लिए आपकी ड्रेसिंग की फैसिलिटी है, उसके बाद 24 घंटे आपको डॉक्टर साहब रहेंगे केयर करने के लिए, प्लास्टिक सर्जन, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं देखने के लिए, डेली वुंड ड्रेसिंग करना, करने से लेकर के यदि उसमें छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, छोटी से छोटी सर्जरी और बड़ी से बड़ी सर्जरी दोनों ही यहां पे अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड के साथ अवेलेबल है। 24 घंटे के लिए आपके पास स्टाफ, बर्न्स का ICU अवेलेबल है, बर्न्स के ट्रेन स्टाफ अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि एक पेशेंट को, बर्न्स के पेशेंट को जरूरत हो सकती है।
1: एक बहुत ही जरूरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं आपसे, कि बर्न में या पैसे की समस्या होती है या लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डॉक्टर के पास नहीं ले जाने का, क्या आयुष्मान कार्ड में बर्न को समावेशित किया गया है? क्या बर्न का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो सकता है और नारायण मेडिकल कॉलेज में क्या ये सुविधा है?
0: डेफिनेटली आयुष्मान कार्ड से बर्न का इलाज हो सकता है, चाहे छोटा से छोटा बर्न हो, चाहे बड़े से बड़ा बर्न हो, किसी भी तरह का बर्न हो, आयुष्मान आपको बर्न का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड कर रहा है।
1: आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वर्णलता, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह गए हैं, ढेर सारी जानकारियां दिलवाना हमारा मकसद है और हम चाहते हैं कि जानकारियां आप तक होनी चाहिए, तभी तो आप क्या करें और क्या ना करें ये जान पाएंगे। बहरहाल, इससे ज्यादा भी अगर जानकारी चाहिए तो नोट कीजिए नंबर 6206803040, 6206803040, ये नारायण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नंबर है, आप इसको डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। आज बर्न होने पर, जलने पर किया जाए, इसकी चर्चा हुई, आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हो सकता है, इसकी चर्चा हुई, लेकिन हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं, बच्चों की बात है कि अगर आपके बच्चे में हृदय की कोई बीमारी है तो नारायण मेडिकल कॉलेज के इसी नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का मौका दिया। मुलाकात होगी पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में एक बार फिर से आने वाले समय में। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आयुष्मान, ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल।

0: जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कुछ फिल्मी नगमे।

ऊंची लोक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार आरडी वर्मन। आप सुन रहे हैं एक रंग कार्यक्रम के तहत किशोर कुमार के गाए कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की अगली पेशकश है सच्चे का बोलबाला फिल्म से। आवाज जी हां किशोर कुमार की है, शब्द रचना अमित खन्ना की है और इसकी तर्ज बनाई है बप्पी लाहिरी ने।

सच्चे का बोलबाला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी। गीतकार थे अमित खन्ना और संगीतकार बप्पी लाहिरी। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उजाले की ओर। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। वार्ताकार हैं अंजनी कुमार तिवारी।
1: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार और सभी माध्यमिक शिक्षा स्कूलों को मानकों के अनुरूप बनाना है। देश भर में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देना है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का उद्देश्य छात्रों को उनके लिंग और विकलांगता के बावजूद शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना का क्रियान्वयन 2009-10 से शुरू हुआ था। इस योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, कार्यान्वयन और धन सहायता शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी करना संवैधानिक अध्यादेश बन गया है, अतः इस अभिकल्पना को माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापी बनाने की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसे बड़ी संख्या में विकसित देशों तथा कई विकासशील देशों में पहले ही हासिल कर लिया गया है। सभी युवा व्यक्तियों को अच्छी गुणवत्ता युक्त माध्यमिक

0: शिक्षा सुलभ कराने तथा कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता के भाग के रूप में भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक आवास में उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर 5 वर्ष के भीतर कक्षा में नामांकन अनुपात को 75% करने, सभी माध्यमिक स्कूलों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक तथा विकलांगता आधारित बाधाओं को दूर करना, वर्ष 2017 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक की शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने और वर्ष 2020 तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखना था। भारत में COVID-19 कोरोना के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। 5 वर्षों के भीतर कक्षा 9th-10th हेतु नामांकन अनुपात को वर्ष 2005 से 2008 के 52.26% से बढ़ाकर 75% करना, वर्ष 2011-12 तक अनुमानित 32.20 लाख छात्रों के अतिरिक्त नामांकन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, 44,000 मौजूदा माध्यमिक स्कूलों का शुभीकरण, 11,000 नए माध्यमिक स्कूलों को खोलना, 1.79 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, 80,500 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना लागत का 75% केंद्र सरकार वहन करेंगे तथा शेष 25% का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हिस्सेदारी पैटर्न 50-50% के अनुपात का था, यानी 50:50 का था। 11वीं एवं 12वीं योजनाओं दोनों के लिए पूर्वोत्तर राज्य हेतु ने निधिमन पैटर्न 90:10 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम हेतु 20,120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रशासक परिषद, इसमें अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार होते हैं, उपाध्यक्ष सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार होते हैं, इनके सदस्य हैं योजना आयोग का सचिव, वित्त विभाग का सचिव, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिव जनजाति मामलात मंत्रालय, सचिव अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, सचिव पंचायती राज मंत्रालय, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव पेयजल विभाग, सचिव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, उप कुलपति NUEPA, अध्यक्ष CBSE, अभियान के लिए समय समय पर मनोनीत कोई अन्य विशेषज्ञ, सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और इसमें सुधार करना है। योजना में सभी माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का निर्धारण करके महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता की बाधा को हटाकर 2017 तक अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिधारण को प्राप्त करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करना और माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके कक्षा 9-10 में नामांकन बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधाएं, स्टाफ और मानदंडानुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडानुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक एवं प्रत्येक 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना, यह सुनिश्चित करना कि कोई बालक लिंग भेद, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अक्षमता एवं अन्य कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित न रहे। प्रत्येक बालक की पहुंच व उपलब्धता तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, 6 वर्ष में सकल नामांकन दर 75% करना, वर्ष 2017 तक सभी बालक बालिकाओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करना, RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2020 तक 100% सकल नामांकन दर का लक्ष्य प्राप्त करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्य योजना, इसके अंतर्गत प्रत्येक बस्ती के 5 किलोमीटर के दायरे में एक एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समूहों, लड़कियों तथा विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों जैसे उपेक्षित वर्गों और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों को यह सुलभ कराना, स्त्री पुरुष सामाजिक आर्थिक विकलांगता तथा अन्य अड़चनों पर ध्यान दिए बिना ही संतोषप्रद गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना शामिल है। मौजूदा स्कूलों का विस्तार करना, उच्च प्राथमिक स्कूलों विशेषतः आश्रम स्कूलों जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है का स्तरोन्नयन करना, वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना, पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम स्कूलों तथा छिटपुट आबादी वाले इलाकों में 5 किलोमीटर वाले मानदंड से छूट देने का प्रावधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि करना, स्कूल मैपिंग के आधार पर कम लाभान्वित क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना, लड़कियों हेतु आवासीय सुविधाएं, शौचालय, वर्दियां, पुस्तकें तथा नगद प्रोत्साहन करना एवं योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान करना, मुक्त विद्यालय तथा दूरस्थ अध्ययन सुविधाओं का विस्तार करना, कक्षा सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर कक्षों में सुधार करना एवं अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षकों विशेषतः महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत वार्ता, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य। वार्ताकार थे अंजनी कुमार तिवारी।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई।
E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार

सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने

इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, साहिर लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्षमा करेंगे, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्ती फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है मिलन फिल्म से। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जान की कसम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। शब्द रचना समीर की थी और इसकी तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। अगला गीत आइए सुनते हैं राधा का संगम फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा

0: और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्र

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डान के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौरत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर जेपी नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर जेपी नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहानात के वकार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में ताउन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे, क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
2: वो बहाना जुड़ रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में, शुरू में वो बोलते हैं अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप, वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या

चंदाना ये गोरे गाला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

0: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
1: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
0: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
2: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।
3: बाप

0: भैया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
1: वनकम जी।
2: ओ पहुंच जाइए ना।
1: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: अयो पहला बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
4: चल चल
1: देवी, तुम बताना बताना।
0: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
5: यह कच्चा

0: एक तो कैसे रहती जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: और से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

कब्जा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और अनुपमा देश पांडे की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन।

जीने की राह फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। झुक गया आसमान, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है।

दीदार फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की, शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है दुलारी फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

अमर फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद साहब का संगीत था। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर की। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है नौशाद ने।

कोहिनूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की बोल थी और नौशाद का संगीत था।

आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद की। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था नौशाद ने। दिल दिया दर्द लिया, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी साहब ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हत्या फिल्म से, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म बॉर्डर से आवाज़ रूप कुमार राठौर की है, जावेद अख्तर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मैं वैष्णवी।
1: विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार।

0: सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।